अच्छा जी, बात ऐसी है कि कोई भी मूवी ऑनलाइन सर्कुलेट होती है, ऑनलाइन लोगों को पसंद आती है, तो लोग कहते हैं कि इसका थिएटर रिलीज क्यों नहीं किया गया। हाँ, बाय द वे मैं आपको बताना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि मूवीज थिएटर्स में आ जाती हैं तब उन्हें कोई देखने नहीं जाता, पर बाद में अलग से OTT प्लेटफॉर्म पर आती है तो लोगों को उसकी वक्त समझ में आती है। पर इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि टाइमली वक्त समझ में आ चुकी है। हां जी, इंडिया के हिमाचल की तरफ में रहने वाले नीम करोली बाबा, जिनका कॉन्वर्सेशन अक्रॉस द ग्लोब बहुत निकल कर आया है, और जो इंडियन नहीं भी हैं उन्हें भी उनकी जो पाज है उनका एहसास हुआ है। सो इसी टॉपिक पर बेस्ड मूवी हनुमान अंश जो है वो ऑलरेडी 200 समथिंग करोड़ का बिजनेस क्रॉस कर चुकी है बॉक्स ऑफिस पर। पर आप सुनने में आ रहा था कि इनको 100 करोड़ का OTT प्लेटफॉर्म से रिलीजिंग ऑफर आया है, पर इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये मूवी अभी के लिए तो नहीं आने वाली है, आगे का पता नहीं, बट हाँ उड़ती उड़ती बातें आती है और उड़ती उड़ती बातें आप तक ना आए मेरे थ्रू ऐसा हो नहीं सकता। मस्ती मॉर्निंग शो पर मैं आज नुपुर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल विद रिटर्न।

फॉर, क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th to 18th September, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड, फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joyrides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
2: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन
3: जोश में रहो।
4: अच्छा, किसी से किसी को रोमांस जताना हो तो उसकी लैंग्वेज क्या हो सकती है? आप सामने वाले बंदे या बंदी को गिफ्ट दे सकते हैं, डेट पर लेकर जा सकते हैं, उसे यहाँ रेडियो मस्ती पर स्पेशल रिक्वेस्ट पर बढ़िया बढ़िया गाने सुनवा सकते हैं, रोमांटिक बातें कर सकते हैं, रोमांटिक मूवी देख सकते हैं, या फिर सिंगापुर में एक सूफी म्यूजिकल शाम इंजॉय कर सकते हैं। हाँ जी, 26th of September सैटरडे वाला दिन है, 7 to 9 PM आपको पहुँचना है ऑडिटोरियम सिविल सर्विस क्लब एट टसनसन 60 टसनसन रोड सिंगापुर। बिकॉज हर बार ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कुछ तो अलग करना है और वो रह जाता है यार, सो व्हाई नॉट। इस बार परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट प्रेजेंट्स इश्क सूफियाना शो बाय अमित धामेलिया। पहुंचिए, अमित धामेलिया की आवाज सिंगापुर को ऑलरेडी पहले भी इम्प्रेस कर चुकी है, दैट्स व्हाई इनके शोज हमेशा हाउसफुल जाते हैं। सो क्विकली अपने टिकट्स बुक कराओ, $60 and $80 में अवेलेबल है। कॉल करो 8138279 मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
0: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
2: GG Mart, your personal grocer.

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। You know what? ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे छोटे में शैतान होते हैं ना, वो बड़े होकर शैतानी नहीं करते, और वो बच्चे जो छोटे में बहुत ही शांत होते हैं, वो बड़े होकर बहुत ही शैतानी करते हैं। ऐसा कहा जाता है, मतलब कैलकुलेशन है एक तरीके की। माने तो माने, ना माने तो ना माने। रेडियो मसीह 24/7 लाइफ पर मैं आज इन पर बस ये मानती है कि कई बार जब ईगो हर्ट होता है ना, और वो चीज़ें जिनको लेकर ईगो हर्ट होता है, हम उन चीज़ों पे इतना वर्क करते हैं कि हम उसके मास्टर हो जाते हैं। हाँ जी, मैं आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी, कई सारे कोरियोग्राफर्स, वो चाहे फराह खान हो, बॉस्को मार्टिस हो, बॉलीवुड में जिन लोगों ने कटरीना कैफ के संग शुरुआती दौर में काम किया ना, तो उनका मानना ये था कि कटरीना कैफ जो है ना, वो एक अच्छी डांसर नहीं है। फिर उन्होंने अपने ऊपर इतना काम किया कि कोई उनके जैसा 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाता था। सो मतलब दिन-दिन की बात है, आप सोच लीजिए, मतलब मेहनत की भी बात है ना। मतलब उन्होंने इन चीज़ों को इतना दिल पर ले लिया, इतना ज़्यादा समझा कि वो आज वहाँ पे पहुँच गई हैं कि उनके लिए लाखों की ड्रेस पहले फाइनल होती है, उसके बाद उनके लिए कोई गाना फाइनल होता है। मैं आज ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर बड़ी फाइनल फाइनल स्टेज पे चल रही हूँ, बहुत सारी बातें लेकर आएगी। डोंट गो एनीवेयर।

पॉड, क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th to 18th September, open field beside Holiday Inn to Owen Road, Farrer Park. Maharashtra Mandal Singapore ka Ganesh Utsav 2026.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
0: इमेजिन एक ऐसा मैजिक हमारे आसपास हो जाए जिससे ना कभी रात ही ना हो या फिर अगर मैजिक सच में एग्जिस्ट करता है ना तो संडे वाला दिन खत्म नहीं होना चाहिए यार. हाँ, डोंट यू थिंक सो? हाँ, हमारी लाइफ में बहुत सारी जगहों पर मैजिक की जरूरत है, जैसे कि बैंक अकाउंट, उसमें कभी भी खालीपन नहीं आना चाहिए, सिर्फ बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए. ऐसा मैजिक अगर दुनिया में है तो मुझसे मिलवाना. मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि भाई ये सारे काल्पनिक मैजिक हो ना हो, लेकिन आपके दिमाग को पढ़ने वाला मैजिक एग्जिस्ट करता है. राइट, सो बात कुछ ऐसी है कि एंटरटेनमेंट का इंतजाम तो हो गया है, लेकिन मेरी बातें आपको ध्यान से सुननी है, बिकॉज बात होते होते मैं आपसे सवाल भी पूछने वाली हूँ. हाँ जी, सो जिसकी मैं बात कर रही थी, सुहानी शाह स्पेल बाउंड शो, अ मेंटलिज्म एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है सुहानी के साथ. एक ऐसा मैजिक शो जो आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया होगा. सो डेट रहेगी 20th September 6 PM onwards, क्रेटा आयर पीपल्स थिएटर, 3OA क्रेटा आयर रोड, सिंगापुर. जो टिकट्स है वो सिस्टिक सिंगापुर पर अवेलेबल है. तो चलो, आपको इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, तो क्विकली बताओ सुहानी शाह का स्पेल बाउंड शो जो होने वाला है सिंगापुर में, इसके टिकट्स कहाँ अवेलेबल है? हाँ, मैं भी तो जानू आप मेरी बातें कितनी क्लियरली सुन रहे हैं. क्विकली रिप्लाई कीजिए 9151896 पे टेक्स्ट या व्हाट्सएप करके. मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.
2: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: देखो सारे काम या ग्लैमर या लाइमलाइट या शौकिया चीजें तब तक ही अच्छी लगती है जब तक आपकी जेब भरी हुई हो, जब तक आप मॉल्स में जाकर मन मुताबिक चीजें परचेज ना कर ले। फिर क्या फायदा ऐसा काम का जो काम करके भी आपको इन रिटर्न कुछ दे ना पाए। हाँ, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपसे पूछना चाहेगी, वो काम जो आपको इन रिटर्न मनी नहीं दे रहा है, क्या आप ज्यादा वक्त कर पाएंगे? डेफिनेटली नॉट। सो मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको याद दिलाना चाहेगी एक एक्ट्रेस रिमी सेन, जिनको आपने 90s, 20s बहुत सारी मूवीज में देखा है ना, मतलब फन में, एलिमेंट में, हर तरह उनका किरदार हमने पसंद किया है। लेकिन उन्होंने अचानक से बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ दी और वो दुबई सेटल्ड हो गई लग्जरी विलास अपार्टमेंट सेल आउट करने की टीम में। तो मतलब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि भैया बॉलीवुड का जो नशा होता है ना, मेरा खत्म हो गया था, मुझे इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। एंड दैट्स सो ट्रू, जिस चीजों में आपको रिटर्न नहीं मिलता ना, एक वक्त के बाद उससे इंटरेस्ट लूज होने लगता है। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके इंटरेस्ट को जमाए रखने के लिए एंटरटेनिंग सॉन्ग्स और भी एंटरटेनिंग बातें लेकर आ रही है। सो कहीं जाने का नहीं।
1: Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
2: GG Mart, your personal grocer.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, सुन टका टक। जोश में
0: भाई जमाना बदल चुका है, वो वक्त जा चुका है जब भाई और बहन एक दूसरे से सिर्फ लड़ते ही रहते थे। हाँ मतलब आजकल के टाइम पर भाई बहन मिलकर एक बड़ा सा बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेकर आ रहे हैं, एक दूसरे का बैकबोन बन रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं आज ऊपर मसी मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि एक ऐसा ही ब्रदर एंड सिस्टर का ड्यूओ, हाँ जी मतलब आप कह सकते हैं ये दोनों ही गायकार हैं और दोनों ही भजन करके आपको इतना इम्प्रेस कर सकते हैं, एक नया अंदाज आपको देखने को मिल सकता है। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ एंड मैं बात कर रही हूँ बैक स्टेज सिबलिंग्स शो की, राइट। ये एक ऐसा शो है जिसमें रियल लाइफ ब्रदर सिस्टर प्राची एंड राघव आपको इम्प्रेस करने के लिए सिंगापुर आ रहे हैं और इनकी जो धार्मिक वाइब है और आप कह सकते हैं जब ये शो होगा तो वहां पे जो सात्विक आपको वातावरण से लेकर कुजीन मिलेगा ना, आप हर चीज एंजॉय करने वाले हैं। तो ये शो यानी बैक स्टेज सिबलिंग्स शो होने वाला है एंगेज थिएटर 2 सनटेक सिंगापुर में 26th ऑफ सितंबर। आप भूलिएगा नहीं, इसके टिकट्स अवेलेबल हैं सिस्टिक सिंगापुर में। मैं आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर।
2: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
1: It's a Masti Partner event.

0: क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th to 18th September, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड, फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: ऐसा होता है कि हमने अपने अंदर का टैलेंट तो निकाल लिया। मान लीजिए आपके हाथों की एम्ब्रॉयडरी बहुत ही अच्छी है, मान लीजिए आपके हाथों की जो बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज्ड कैंडल्स है ना, वो बहुत शानदार है, मान लीजिए आपके हाथों के जो डेकोर आइडियाज है ना, वो बहुत ही शानदार है और आप इन चीज़ों को एज अ बिजनेस आगे लीड करना चाहते हैं, तो सिंगापुर में वो कौन सी जगह है जो पॉकेट फ्रेंडली भी है और आपको लगे कि हाँ यहाँ से रिटर्न भी अच्छा मिला है। सो डेफिनेटली बताना चाहूंगी, इस 27th September आपके लिए आने वाला है फेस्टिव बाजार 2026। ये होगा माउंट बैटन सीसी मल्टीपर्पज हॉल में। यहाँ पे आपको शोकेस करने के लिए अपना बिजनेस, प्रीमियम टेबल मिलेगी $100 में, स्टैंडर्ड टेबल मिलेगी $80 में, एंड प्लस यहाँ पर बहुत सारे लोग शॉपिंग करने के लिए आने वाले हैं, फूड एंजॉय करने के लिए आने वाले हैं, किड्स के लिए भी प्रोग्राम्स हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस भी हैं, तो एंटरटेनमेंट भी होने वाला है। सो अगर आप सुबह से शाम यहाँ पे शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो आप बोर नहीं होंगे कुल मिलाकर। सो आपको 27th September को पहुंचना है माउंट बैटन सीसी मल्टीपर्पज हॉल। एडवांस में अपनी बिजनेस टेबल्स जो है वो भी बुक करवा सकते हैं आप कॉल करके 8330-2518 पर। मैं आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। देखो, पहले लेवल पे जो क्लाइमेक्स आता है वो मूवीज में आता है। नंबर टू लेवल पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हमें बहुत सारे शोज मिल जाएंगे जिसके क्लाइमेक्स जो है ना वो हमें सरप्राइज दे देते हैं। नंबर थ्री सबसे ज्यादा सरप्राइज और क्लाइमेक्स रखने वाला प्लेटफॉर्म है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में इतना कुछ हो रहा है कि हमें लगता है ओ माई गॉड, सच में इतना कुछ क्यों हो रहा है। हाँ, मैं आज ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है एंड बताना चाहूंगी कि पॉलिटिक्स और बॉलीवुड को कहीं ना कहीं मिक्स करने की कोशिश करी जा रही है। सो इस बार कहा गया कि जो नेशनल अवार्ड्स है ना वो कैपिटल सिटी दिल्ली में रखने के बजाय गुजरात में क्यों रखे जा रहे हैं। तो इसमें परेश रावल ने पता है क्या बोला है कि गुजरात भारत का हिस्सा है, गुजरात कोई पाकिस्तान नहीं है, जो आपको इतनी दिक्कत हो रही है। हाँ, तो बिना बात की चीज़ों का पॉलिटिकल एंगल ढूंढना छोड़ दो और आगे बढ़ना सीख लो। चलिए, ये जो भी टॉपिक होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे टॉपिक्स आगे जाकर कहीं ना कहीं मूवीज में कन्वर्ट करने के भी काम आएंगे। मैं आरजे नुपुर ऑन दिस नोट साइनिंग ऑफ। मुलाकात होगी बहुत जल्द। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मेरी जान। मिलते हैं जल्द रेडियो मसी 24/7 लाइव।

सिंगापुर, क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th to 18th September, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड, फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: आएंगे
1: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे
2: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7। जोश में रहो।
3: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
0: आमिर खान wondered.
3: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: सलमान खान wanted answers.
4: कैसे किया ये?
0: आर माधवन said.
5: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
6: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
7: Anybody talks about magic in the country, I want them magic सुहानी.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! One Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
8: How do you know these things? Stop reading my mind.
9: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
10: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर.
2: जीजी
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
2: Gigi Mart, your personal grocer.
3: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

0: Let's go. You already know.
1: मेरी आशिकी चाहूँ मैं

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हेलो हेलो हेलो हेलो सिंगापुर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव इज ऑन। एक और ब्रांड न्यू मस्ती हैंगआउट इज स्टार्टिंग राइट नाउ। नमस्कार आदाब, वेलकम सभी को। मैं हूँ आपके साथ आपके मुग्धा। अच्छा एक बात बताओ, वेंसडे को आप किस कैटेगरी में आते हो? वो लोग जो ये कहते हैं कि चलो आधा हफ्ता तो हो गया, अब देखो शुक्रवार तो ये आ गया, मतलब फ्राइडे ये रहा, या वो जो कैलेंडर देख के बस कहते हैं अरे अभी तो आज वेंसडे है। है ना फनी, मंडे को हम वीक को कितना सीरियसली लेते हैं, मतलब मंडे आ गया मंडे आ गया, बहुत सीरियसली स्टार्ट करते हैं, ट्यूसडे को उसको मैनेज करते हैं, और वेंसडे तक आते आते हम कॉम्प्रोमाइज मोड में आ जाते हैं ना, जो हो रहा है होने दो, म्यूजिक है अच्छा ठीक है, अच्छा है ठीक है, नहीं है ठीक, अरे क्यों बताओ जरा, म्यूजिक है बातें हैं अच्छा ही है, वही तो करने हम आए यहाँ पे। मस्ती हैंगआउट में बात सिंगापुर की होगी, बॉलीवुड की होगी, एंटरटेनमेंट की होगी, कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां होंगी, कुछ यूजफुल, कुछ क्वर्की, थोड़ा वो जिसके बाद आप कहेंगे अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था, तभी तो मैं आती हूँ। और पता है क्या, मिड वीक का एक एडवांटेज है, वीकेंड अब सिर्फ इमेजिनेशंस में नहीं रहेगा आपकी, थोड़ा विजिबल होने लग जाता है, ऐसे धुंध छट जाती है। वैसे धुंध से तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई, पर हम उस पे पहुंचेंगे। फिलहाल आप एमआरटी में हैं, ऑफिस में हैं, लंच के बाद एनर्जी वापस बुला रहे हैं, या फिर घर के कामों में अपनी एनर्जी जो है वो थोड़ी बहुत लगा रहे हैं,

0: सिंगापुर, क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेशोत्सव 2026। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th to 18th September, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड, फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026। सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: मस्ती पार्टनर इवेंट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: अच्छा सिंगापुर, मालूम है हमारे घर का कचरा आखिर जाता कहाँ है, कभी सोचा है आपने? नहीं, अच्छा चलो ये छोड़ो, एक और ट्विस्ट देती हूँ। उसी वेस्ट की एश से बनी जगह पे आज बर्ड्स, मैंग्रोव्स, मरीन लाइफ, ये उनका हेवन होम बन चुका है। आप सोच सकते हो, सिंगापुर में ज्यादातर सॉलिड वेस्ट है ना, उसको पहले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में बर्न किया जाता है। इस प्रोसेस से कचरे का जो वॉल्यूम है वो काफी कम हो जाता है जब वो बर्न हो जाता है, और साथ में बिजली जो है वो भी जनरेट होती है, और फिर बचता क्या है, राख, एश, वो जाती है कहाँ? यस, सीमा काउ लैंडफिल, मेन आइलैंड से अराउंड 8 किलोमीटर की दूरी पर। अब सुनने में लगता है ना कि एश को सी में डंप कर दिया होगा, ऐसे ही तो कुछ हुआ होगा। नहीं नहीं नहीं, स्टोरी यहीं पे तो इंटरेस्टिंग हो जाती है। एरिया को स्पेशली इंजीनियर किया गया है प्रोटेक्टिव लेयर्स और बैरियर्स के साथ, ताकि वेस्ट जो है वो सी को कंटामिनेट

ना करे। और पता है द सरप्राइजिंग पार्ट, ये जो है ना सिमाकाऊ, इसके आसपास मैंग्रोव्स, कोरल रीफ, सी ग्रास, बर्ड्स और काफी ऐसी सारी चीजें हैं जो लिविंग थिंग्स है एक तरह से। और वहां पे गाइडेड नेचर वॉक्स जो है और बर्ड वॉचिंग ये भी होती है। तो मुझे इस पूरी कहानी का बेस्ट पार्ट पता है क्या लगा, क्लीन शहर सिर्फ सफाई से नहीं होता, प्लानिंग से होता है। अभी पिछले शो में भी हमने क्लीन शहर की बात की थी, राइट? पर एक रियलिटी है, लैंडफिल की कैपेसिटी अनलिमिटेड तो देखो है नहीं। तो जितना स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट जरूरी है, उतना ही जरूरी है हम कम वेस्ट क्रिएट करें। सस्टेनेबल लिविंग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: अच्छा सिंगापुर, सुबह बाहर निकले और हवा में आपको कुछ से एक्स्ट्रा सा महसूस हुआ? सही हुआ है, इमेजिन नहीं कर रहे हो आप। सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो। एयर क्वालिटी अक्रॉस सिंगापुर और सारे जो 5 रीजन्स हैं अनहेल्दी रेंज में चली गई है वापस, और सेंट्रल सिंगापुर का जो PSI है वो एक पॉइंट पे 154 तक पहुंच गया। रीजन सदर्न सुमात्रा की तरफ से जो स्मोक हेज है ना, वो हवा के साथ इधर की ओर आ रहा है। अब गुड न्यूज ये है कि एक आध घंटे के अंदर अंदर कुछ रीडिंग्स तो इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन अगर आपको आंखों में या गले में इरिटेशन फील हो रही है तो आउटडोर एक्टिविटीज आज आप थोड़ा कम ही करें। इनफैक्ट आते हफ्ते में मैं तो यही कहूंगी आउटडोर एक्टिविटीज थोड़ा सा लिमिटेड रखें। और पता है हेज वाले दिन मुझे सबसे पहले क्या लगता है, अगर आउटडोर निकलना इतना ही इम्पोर्टेंट है तो क्यों ना ऐसी चीजों को सबसे पहले ले आए जो आपके हेल्थ का ध्यान रखती हो, जैसे कि ऑटम सेल जो चल रही है कियोस्क नंबर 12 वेलोसिटी नोवेना में। ये मिड ऑटम सेल है जो कि 11 सितंबर से शुरू हुई थी, 25 सितंबर तक चलेगी। जीजी मार्ट कियोस्क नंबर 12 वेलोसिटी नोवेना। अब ये जो है यहाँ पे आपको कृषिवल के नट्स और फ्लेवर्ड क्लासिक ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं। पूरी हेल्दी सोसाइटी है यहाँ पे, पूरे कियोस्क में आपको सब कुछ हेल्दी मिलेगा, सीड्स एंड नट्स एंड फ्लेवर्स सब कुछ। ऑप्शंस तो इतने सारे हैं कि पूछो मत। नेचुरल है, केमिकल फ्री है, हलाल सर्टिफाइड ऑप्शंस हैं, प्लस फेस्टिव गिफ्ट पैक्स भी है। तो ऑफिस के साइड हो या अभी फिलहाल घर पे हो, अगर आप बाहर निकल रहे हो किसी न किसी वजह से, आउटडोर आपको निकलना है, तो मैं तो कहती हूँ ये वाला काम तो जरूर ही कर लेना, क्योंकि अभी 25 तक है तो आपके पास टाइम है। नोवेना के साइड हो, घर के लिए कुछ होलसम मंचिंग चाहिए, तो ये मिड ऑटम का जो ये सेल है ना, दिस इज द बेस्ट स्टॉप फॉर यू। आप जरूर जाइए, बस एक हेज का रूल याद रखना, ज्यादा देर बाहर मत रहना, और जब एक बार निकल रहे हो तो कोशिश करो कि चीजें जल्दी जल्दी जल्दी रैप अप करके ज्यादा से ज्यादा काम इंडोर का पूरा करके वापस घर आ जाओ, अपने वाले इंडोर, समझे?
2: मुझे प्यार है तुमसे, हाँ तुझ में ही तो मेरा जहां, मनहारी तनहारी सबको मारे बेतमा।
1: ध्यान रखो भाई, वैसे मुझे लगता नहीं ज्यादा दिन ये हेज चलेगा, वापस हम हेल्दी एयर महसूस करेंगे।
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: अच्छा सिंगापुर एक सवाल है, कॉन्सर्ट्स में जब आप जाते हो तो सबसे ज्यादा मजा कब आता है आपको? जब आर्टिस्ट गा रहा होता है और आप जब अपनी सीट पे बैठे होते हो, या फिर जब पूरा रूम या पूरी जगह जो है वो एक साथ गाने लगती है, क्लैपिंग करने लगती है, रिस्पॉन्ड करती है, और एक पॉइंट के बाद स्टेज और ऑडियंस में कोई डिफरेंस ही नहीं होता, वो बिल्कुल एक साथ मर्ज हो जाते हैं। हालांकि इट्स डेंजरस बट नॉट दैट, लिटरली मर्ज हो जाते हैं सॉर्ट ऑफ थिंग। ये सब कुछ अगर आप इमेजिन करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, देन बैक स्टेज सिबलिंग वही मैजिक है। प्राची एंड राघव, दिस सिबलिंग जोड़ी जो है, इनका फॉर्मेट जो है वो कोई नॉर्मल कॉन्सर्ट जैसा बिल्कुल भी नहीं है। आइडिया बहुत ही सिंपल है, स्टेज इज द ऑडियंस, मतलब एक ऐसी शाम जहां पे आप सिर्फ परफॉर्मेंस देखोगे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप परफॉर्मेंस का हिस्सा बनोगे, आप गाओगे, तालियां बजाओगे, और ये भजन जो है वो जैमिंग करेंगे, थोड़ा सूफियाना फ्लेवर आएगा, इनके साथ आप कनेक्ट करोगे। हो सकता है कुछ ऐसा नॉस्टैल्जिक सा आ जाए जिसके साथ आपको लगे कि वाओ ये वाइब तेरी मेरी मिल दिया, सॉर्ट ऑफ फीलिंग आ जाएगी। मुझे शो की एक और बहुत अच्छी बात लगती है, जेनरेशन का कोई आप यहाँ पे बंधन नहीं है। अरे मैं अकेले कैसे जाऊंगी, ओ माई गॉड फ्रेंड्स को लेके ऐसी जगह पे कैसे जा सकते हैं, ओ माई ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाना पड़ेगा, अरे जाके तो देखो वापस आने की इच्छा नहीं करेगी, ऐसी जगह ये है। तो ये जो मैं आपको भेज रही हूँ ना बैक स्टेज सिबलिंग, ये कहाँ जाना है सुन लो पहले। दिस इज हैपनिंग ऑन 26th of September शाम को 6 बजे, एंगेज थिएटर 2 सनटेक। टिकट्स एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं सिस टिक पर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको टिकट घर बैठे मिल जाए तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, ये जो बैक स्टेज सिबलिंग है प्राची और राघव, ये क्या है? ऑप्शन ए है दे आर म्यूजिकल आर्टिस्ट, ऑप्शन बी स्टैंड अप कॉमेडियन। अगर आपने मुझे सवाल का सही सही जवाब दिया तो क्या पता आपको कहीं गए बिना ही कॉन्सर्ट के टिकट्स मिल जाए। यस यू हैव दैट राइट, सही जवाब आपको भेजने हैं 9151893 पर। प्राची और राघव क्या हैं? दे आर म्यूजिकल आर्टिस्ट, सिबलिंग, या फिर स्टैंड अप कॉमेडियंस? जल्दी जवाब भेजिए। और ज्यादा अगर आप जानकारी चाहते हैं शो के बारे में तो 9866-7144 पर कॉल करके पता लगा सकते हैं।
2: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक, जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec, Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
3: It's a Masti Partner event.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: अच्छा सिंगापुर, पता है कभी कभी कंपटीशन इतना बड़ा होता है कि लोग डेट शिफ्ट करने लग जाते हैं। बॉलीवुड की बात कर रही हूँ। हाय हेलो वेलकम, आप सुन रहे हैं मुग्धा को। यह है शो का सेकंड आर और हम आ चुके हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। और फिर एक है शाहरुख खान जो कहते हैं सैंडविच में हम सेंटर की टेस्ट की टिक्की हैं, हम कोई डेट शिफ्ट नहीं करेंगे। ओ माय गॉड, मुझे तो ये सुन के भूख लग गई। आई वांट समथिंग वेरी क्रिस्पी एंड क्रंची जस्ट लाइक अ बर्गर जिसमें बीच में एक क्रंची टिक्की हो। खैर, किंग की रिलीज की जो डेट है उसको लेके फैंस काफी क्यूरियस हो रहे हैं क्योंकि 24 दिसंबर 2026 को ये फिल्म रिलीज हो रही है और उसके आसपास काफी बड़े बड़े नाम आ रहे हैं जैसे कि अवेंजर्स की डूम्सडे, ड्यून्स की पार्ट 3, ये सब कुछ लाइनअप है। अब एक फैन ने आस्क एसआर की जो होता है उसमें बेसिकली पूछ ही लिया कि भाई किंग जो है इन दोनों के बीच में सैंडविच तो नहीं हो जाएगी, तो एसआर के को आप जानते हैं जवाब देने में वो माहिर है, इज द क्वर्की वन। उन्होंने कहा टेंशन जीरो है, मजाक मजाक में कहा होगा पर सही बात है। उन्होंने कहा कि हम तो बीच की टेस्टी टिक्की हैं, कई बार लोग ब्रेड हटा के टिक्की एंजॉय करते हैं, है ना। मुझे भी यही लग रहा है और मुझे ये लाइन ना सिर्फ फनी नहीं लग रही, एक्चुअली फिलॉसफी है। कंपटीशन को थ्रेट की तरह मत लो, अपनी जगह का फ्लेवर समझो। एक बर्गर में जितना इंपॉर्टेंट बन है उतना ही इंपॉर्टेंस तो टिक्की का भी है। विदाउट टिक्की व्हाट इज अ बर्गर। तो अगर कॉम्पिटिशन ना हो मार्केट में तो मजा कैसे आएगा। ये बात तो सही है। फिल्म का शूट जो है वो इंजरीज की वजह से स्टॉप स्टार्ट हुआ, लेकिन एसआर के ने कहा कि देखो अब काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक्शन बड़ा है, सॉन्ग्स वीएफएक्स पे काफी काम चल रहा है और ट्रेलर को लेकर के उनका बहुत ही सिंपल जवाब था सब आएगा फिल्म से पहले। वाओ एसआर की, आपने बड़ी कमाल की बात बताई, फिल्म से पहले आ जाएगा ट्रेलर। हाँ तुसी बड़े मजाक किया हो। और हाँ, अरिजीत सिंह का एक गाना है उसको फिनिशिंग टचेस दे रहे हैं। भैया अरिजीत, आपने कहाँ रिटायरमेंट अनाउंस किया यार, इतने प्रोजेक्ट बाकी थे तो जब सारे निपट जाते उसके बाद कहते हैं मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। समझ ही नहीं आता कि रिटायरमेंट छोड़ दिया है, कितने प्रोजेक्ट साइन कर। मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ। एनीवे

मेरा सवाल है कि बॉक्स ऑफिस सैंडविच में टेस्टी टिक्की कौन निकलेगा, मार्वल, डून या किंग? वैसे तो किंग ही बीच में है, अब देखते हैं, दिसंबर खुद ही बता देगा। स्टे कनेक्टेड।

सिंगापुर, क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेशोत्सव 2026। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th टू 18th सितंबर, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेशोत्सव 2026।

0: एवरीथिंग, सब कुछ एक ही पंडाल के नीचे बाजार में. किड्स को कहीं छोड़ के आने की जरूरत नहीं है, यही लाके छोड़ दो, बिकॉज यू हैव अ बाउंसी कैसल, यू हैव जॉय राइड्स. घर के बड़े जो हैं बोलेंगे शॉपिंग करते हैं, बच्चे कहेंगे चलो राइड पर चलते हैं, और बीच में लाइव परफॉर्मेंसेस हैं बाय द रेजिडेंट्स, लकी ड्रॉज भी हैं, तो आप प्राइज जीत सकते हो. एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है, स्टॉल्स के लिए हमने काफी बार मेंशन किया और बहुत इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्ड आया, ऑलमोस्ट सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं. तो जब सारे स्टॉल्स भर चुके तो आपको पता है कितना कुछ होगा शॉपिंग करने के लिए, कितनी वैरायटी, कितने आइटम्स, कितने प्रोडक्ट्स, और उफ आप तो तृप्त हो जाएंगे शॉपिंग कर करके. तो चलिए अपने अपने पतियों के बस्ते उठाइए, मतलब बैग्स उठाइए, वॉलेट्स निकालिए, बच्चों को पकड़िए और पहुंच जाइए 27 सितंबर को सुबह 10 से शाम 6 बुक कर लीजिए. कहाँ आना है? माउंट बैटन सीसी मल्टीपर्पज हॉल में. और हाँ, बस देखने जा रहे हैं, ये वाली लाइन घर से निकलने से पहले बोल देना, बाद में कोई नहीं मानता कि आपने ये बोला था.
1: Soup sound.

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joyrides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 सितंबर 7 p.m. ऑनवर्ड्स CSE ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड. टिकट $60 ऑनवर्ड्स. कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0. इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया.
2: It's a must-be partner event.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Hey, hi, welcome back. अच्छा, आपने कभी कोई इंग्लिश वर्ड बिल्कुल सिंपल मीनिंग में यूज किया हो और दुनिया ने उसका पूरा फुल ऑन बॉलीवुड क्लाइमैक्स बना दिया हो? तो बॉलीवुड में अक्सर ऐसा ही होता है, टीजर और ट्रेलर देख के पूरी फिल्म की कहानी अज्यूम कर लेते हैं, बाद में भले सब कुछ अलग हो जाता है। फिलहाल ये हो रहा है अमिताभ बच्चन जी के साथ। Yes. उन्होंने अपने एक ब्लॉग में लिखा, इट्स लेट, टाइम टू रिटायर, मतलब अब इतनी सी बात की रात हो गई है, अब सोने जा रहा हूँ। इंटरनेट और हेडलाइंस ने तुरंत पकड़ ली बात, अमिताभ बच्चन ले रहे हैं रिटायरमेंट, चैन से सोना है तो जाग जाइए हैं। फिर बिग बी ने अपने अंदाज में क्लैरिफाई किया, काम से रिटायर नहीं हो रहा हूँ भाई, सोने जा रहा था। अब यार बिग बी जी, आप रिटायर लिखोगे तो रिटायर ही समझ में आएगा ना, स्लीप ऐसा लिखते, गोइंग टू स्लीप, रिटायर लिखोगे तो रिटायर ही समझेंगे। उन्होंने मजाक में ये भी ऐड किया कि वहां पे आपको इनविटेशन तो नहीं मिलेगा खैर साथ में आने का, पर ठीक है। आपको पता है, he's of 83, अक्टूबर में वो 84 के हो जाएंगे, and currently he's hosting कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18। Can you believe that? 18 साल हो गए शो को। By God, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। हाय, पता है मुझे स्टोरी में रिटायरमेंट ज्यादा एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। आजकल एक सेंटेंस ना कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकल के पूरी स्टोरी बना देते हैं उसको, सोशल मीडिया हेडलाइंस, फुल स्टॉप से पहले पूरा कंक्लूजन आ जाता है। जबकि मैंने किसी बहुत महान फिल्म में ये पढ़ा था कि अगर किसी स्टोरी के आगे एक फुल स्टॉप की जगह एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो मतलब इसका कोई कंक्लूजन नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, सच के अलावा कुछ भी हो सकता है।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: अच्छा, कुछ म्यूजिक या कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते, वो आपके अंदर उतर जाते हैं इसे ड्रिल करके। सूफी म्यूजिक का भी यही चार्म है एक्चुअली। गाना खत्म हो जाता है और आप उधर ही रह जाते हो, उसी जोन में। मूड ही ऐसा होता है, आप उस मूड के साथ बहुत देर तक रहते हो। तो अगर आप एक सोलफुल लाइव इवनिंग पसंद करते हैं, दिस इज फॉर यू। परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया। दिस इज हैपनिंग ऑन 26th of September 2026 शाम 7 से लेकर के रात के 9 बजे तक, है ना। एंड इट इज हैपनिंग एट ऑडिटोरियम सिविल सर्विस क्लब एट टेसनसन 60 टेसनसन रोड स्कॉर सिंगापुर में। और कहा जाओगे, पता है इस इवनिंग का प्रॉमिस क्या है? सोलफुल वॉइस है, सूफी फ्लेवर्स है और लाइव म्यूजिक है। एक ऐसा सेटअप है जहां गाने बैकग्राउंड नॉइज नहीं होते हैं बल्कि पूरी शाम का सेंटर होते हैं। टिकट्स आर ऑफ $60 and $80। बुकिंग के लिए आप पे नाउ पर बुक कर सकते हैं 8138-2790। और हाँ, चाहिएगा जरूर। मैं क्या कहती हूँ कि हर वीकेंड को लाउड होना ऐसा कंपल्सरी नहीं है, मैं तो हर बार यही कहती हूँ। कुछ वीकेंड्स बहुत सुकून भरे होने चाहिए, क्योंकि आता मंडे पता नहीं क्या लेके आ रहा है अपने सरप्राइज बॉक्स में। तो कम से कम जो वीकेंड है उसको सुकून के साथ हम मना लें तो क्या

0: खाओ।
1: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: Krishival nuts only on GTmartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे wholesome healthy options.
2: GTmart, your personal grocer.
3: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 सितंबर 7 PM ऑनवर्ड CSE ऑडिटोरियम टिसेंसन रोड. टिकट $60 ऑनवर्ड्स. कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0. इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया.
2: It's a must-be partner event.

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: सिंगापुर शादियों में एंट्री का कॉम्पिटिशन अब एक अलग ही लेवल पर चला गया है जी। इनफैक्ट उड़ रहा है हवा में। अभी हाल ही में एक ब्राइड ने रिसेप्शन में बालकनी से सस्पेंडेड विंग पे ऐसे डिसेंड करके ग्रैंड एंट्री मारी। अब ये कहाँ हुआ एग्जैक्टली ये तो नहीं पता, पर वीडियो वायरल हो रहा है तो अब ये सबको पता है कि एंट्री कैसे हो रही है। देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंट्री। नीचे गेस्ट्स हैं फोन लेकर तैयार, दे आर चीयरिंग एंड रिकॉर्डिंग। व्हाइट फ्लावर से डेकोरेटेड स्विंग है, वो नीचे से गेस्ट फोन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो यूज एरियल डांस की तरह गोल गोल घूमते घूमते आ रही है। पर वो देख के मुझे सडनली एक मिनट, बॉलीवुड की एक फिल्म याद आ गई। हाँ, हलचल, अक्षय खन्ना, लास्ट शादी का सीन, मंगलसूत्र याद आया। हाँ, अक्षय खन्ना, करीना कपूर, अमरीश पुरी, फुल फैमिली वाला केओस है कि नहीं। 2004 की बॉलीवुड मूवी जिसमें एक ऐसा ही सीन था, मुझे लगता है एशियन स्टाइल वहां से कह नहीं सकते, मुझे तो सडनली क्लिक हुआ तो मुझे याद आया। डिफरेंस ये है कि फिल्म में सीन कॉमेडी का पार्ट था, यहाँ पे ब्राइड स्वयं एस्थेटिक रूल बना करके झूले पर बैठ कर आ रही है। अब दोनों खुशी खुशी उस झूले पर जिंदगी भर झूलेंगे। कौन किसको झुलाएगा ये तो शादी के बाद पता लगेगा। मेरा कंसर्न बस एक है, एंट्री ब्यूटीफुल थी नो डाउट, बट मैं होती तो नीचे उतरते वक्त रोमांस से ज्यादा मेरे दिमाग में एक ही बात होती, भाई रोप किसने खींची थी। वाओ, आजकल कितना कुछ आ गया ना मार्केट में, बस आपको पता होना चाहिए उसके बाद देखो। वो एक बचपन में कहावत पढ़ी थी मैंने, इमेजिनेशन इज अ काइट दैट फ्लाइज टू अनफैथमेबल हाइट, ऐसे कुछ था। भैया गलती हो गई, अंग्रेजी हमने गलत बोल दी, तो बड़ी अंग्रेजी थी इस कहावत में, तो याद करी थी, अब तो भूल

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। आपको पता है एक रोबोट है जो आपके लिए कुक कर सकता है, आपके लिए क्लीनिंग कर सकता है, आपको उठा भी सकता है और आपको दुनिया की सच्चाई भी दिखा सकता है कि रोबोट सब कुछ कर सकता है। एक चाइनीज रोबोटिक कंपनी है, उसने अभी अभी एक ऐसा रोबोट बनाया जो कि बेसिकली आपके घर की मेड है, समझे? हाउस होल्ड चोर्स वो करेगा, एवरी डे चोर्स इनसाइड आपके रियल होम का रियल काम। वो आपको उठाएगा, आपका रूम साफ करेगा, ऑपरेट अप्लायंसेस जो है वो भी काम करेगा, वो खाना भी बनाएगा, लाइक प्रिपेयरिंग फूड एंड मूविंग बियॉन्ड द सिंगल टास्क मशीन। बहुत कुछ है जो ये रोबोट कर सकता है, लेकिन एक काम नहीं कर सकता ये रोबोट। ये रोबोट आपको ये नहीं बताएगा कि आपको 20 सितंबर को कहाँ जाना है। देखा मैं कह रही थी, ये रोबोट आपको नहीं बताएगा कि सुहानी शाह के शो में जाना है। Yes, you got it right. तो सिंगापुर आप मुझे उधर ही मिलिए। कहाँ मिलेंगे आप मुझे? आप मुझे मिलेंगे सुहानी शाह के शो स्पेल बाउंड में। वंडर सोल एस्केपेड्स एंड एपिक एनकाउंटर्स लेकर आ रहे हैं स्पेल बाउंड, अ मेंटलिज्म एक्सपीरियंस लाइव इन सिंगापुर। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? यहाँ पे कोई मैजिक ट्रिक विक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैजिक ट्रिक देखा, ताली बजाओ, नहीं, लोग डब्बे में से गायब हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। डब्बे में से गायब होकर लोग कहाँ जाते हैं ये पता लगा लेती है सुहानी शाह। Yes, that is mind reading, mentalism and impossible experiences. मतलब स्टेज पे कुछ होगा, ऑडियंस में आपके दिमाग में बार बार कुछ चल रहा होगा, आप बोलेंगे नहीं यार पॉसिबल कैसे हो सकता है। सुहानी को सब पता है, सुहानी सब जानती है। सुहानी शाह का अगर आप पोस्टर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो है द वर्ल्ड्स मोस्ट सब्सक्राइब्ड मेंटलिस्ट। जी, और सिंगापुर में ये शो हो रहा है 20 सितंबर को शाम 6 बजे एट क्रेटा आयर पीपल्स थिएटर, 38 क्रेटा आयर रोड। इसके जो टिकट्स हैं ये आपको एक्सक्लूसिवली मिलेंगे सिस्टिक पर, लेकिन उसके अलावा ये टिकट्स आपको इधर भी मिलेंगे हमारे रेडियो मस्ती से। लेकिन उसके लिए आपको मुझे एक सवाल का जवाब देना होगा, स्पेल बाउंड किस टाइप का एक्सपीरियंस है? ऑप्शन ए मेंटलिज्म, ऑप्शन बी म्यूजिक कॉन्सर्ट। करेक्ट आंसर्स कहां भेजेंगे सोचिए, दिमाग अच्छा छोड़िए, रहने दीजिए। 9151896 पर। देखा, मैं समझ गई थी कि आप दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहते, कहीं मैं सुहानी शाह तो नहीं। जस्ट किडिंग। सही जवाब दीजिए, आपके पास मौका है लाइव टिकट्स, मतलब लाइव शो के टिकट्स जीतने का। यस, सो नोट द डेट, 20 सितंबर शाम 6 बजे एट क्रेटा आयर पीपल्स थिएटर।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, हैव यू एवर नोटिस्ड फेस्टिवल का बेस्ट पार्ट सिर्फ एक दिन नहीं होता है, और अभी जो फेस्टिवल चल रहा है हाल फिलहाल उसका तो बिल्कुल भी नहीं है। मूड धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्डअप होता है ना, और महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026 उसी ब्यूटीफुल मिड वीक स्टेज पर है। वेंसडे 16 सितंबर से इवेंट शुरू है, यानी आज से, और अगर आप इवनिंग प्लान सोच रहे हैं तो 8 PM इवनिंग प्रेयर के साथ सेलिब्रेशन कंटिन्यू होगा। शाम 7 बजे पर कल्चरल परफॉर्मेंसेस हैं, एंड सिर्फ दर्शन नहीं है, प्रॉपर फेस्टिव एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। उसके बाद 17th यानी मंगलवार को, यानी कि कल सुबह 8 बजे सबसे पहले होगा अथर्वशीर्ष पठन, एंड दैट विल बी फॉलोड बाय 9 AM मॉर्निंग प्रेयर, और उसके बाद रात में 8 बजे इवनिंग प्रेयर, और उसके बाद वो एनर्जी जो आपको एक अलग ही लेवल पर लेकर जाएगी, आपने कभी नहीं देखी होगी, दैट इज अ ढोल ताशा 8 बजे की प्रेयर के बाद। एंड फ्राइडे 18 सितंबर फाइनल स्प्रेड इज देयर, सुबह 8 बजे मॉर्निंग प्रेयर्स, एंड शाम 5 बजे जय जय उत्तम, एंड देन रात को 8 बजे उत्तर पूजा। वेन्यू सेव करिए ओपन फील्ड बिसाइड हॉलीडे इन 2 Owen Road फेरर पार्क। दिस आइडल, इस पूरे इवेंट के जो गणपति के आइडल हैं वो स्पॉन्सर्ड हैं श्रीमंत दगडू सेठ हलवाई सार्वजनिक गणपति ट्रस्ट पुणे की तरफ से, एंड वी आर ऑफ कोर्स देयर। तो मुझे लगता है कि ये जो एक पूरा ये इवेंट है ना ऑफ 16th, 17th एंड 18th, ये आपको जरूर एंजॉय करना चाहिए। आते हफ्ते का हर दिन अगर आपने कैलेंडर पे सही तरीके से नोट किया तो मुझे लगता है ऑल्टरनेट डेज में आपके पास कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ है करने के लिए, बोर तो कतई नहीं हो रहे अगर आपने नोट किया है तो। मुझे इस सेलिब्रेशन की एक बात सबसे ज्यादा पसंद है, दिस इज नॉट जस्ट अ रिचुअल, ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, कम्युनिटी मेमोरी है आपके लिए। आप जाते हो कुछ वक्त के लिए और वापस आते हो पूरे एक साल के लिए जीवन।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th to 18th September, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड, फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026।
3: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
4: और सिंगापुर पता ही नहीं चला कि बुधवार का मस्ती हैंगआउट अपने लास्ट स्ट्रेच के आखिरी पलों पे आ चुका है। फ्यू सेकंड्स बस मैं जाऊंगी और वो फ्यू सेकंड्स भी खत्म हो जाएंगे। आज का शो बिल्कुल मिडवीक की तरह था, जैसे कि उसको होना चाहिए था, क्योंकि है थोड़ा यूजफुल भी था, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड भी था, फिल्मी भी था, क्वर्की भी था, बाई गॉड इतना कुछ था क्या। अच्छा, और बीच बीच में वो मोमेंट्स जहाँ पे बस अच्छा ये भी होता है दुनिया में, ऐसे वाले रिएक्शंस। कभी हमने सिंगापुर के स्मार्ट सिस्टम की बात की, कभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स की बात की, बॉलीवुड की बात की, सिंगापुर में क्या क्या हो रहा है उन इवेंट्स की बात की, एंड देन लास्ट आवर में हमने ये बता दिया कि देखो शादी करो, ऐसी चीजें शादियों में देखने को मिलती हैं। एक बात बताऊं, मुझे वेंसडे का ये जो एक पार्ट है ना, ये बहुत पसंद है। आधा हफ्ता निकल चुका होता है, फ्राइडे थोड़ा सा क्लियरली आपको धुंध के पीछे से दिखाई दे रहा होता है और हमारे पास इनफ रीजंस होते हैं अपने मूड को हल्का करने के। तो बाकी का दिन इजी रखिए, बाकी का जो वक्त आपके पास है उसको आराम से मक्खन की तरह गर्म छुरी जैसे निकलती है मक्खन में से पैसे निकालिए। कोई काम पेंडिंग है तो वो कोई बात नहीं, आप उसको कल कर लेना, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है दिमाग पे। अच्छे गाने आए तो वॉल्यूम बढ़ा के सुनना, मन करे तो नाच भी लेना। मैं हूं मुग्धा और आप सुन रहे थे मस्ती हैंगआउट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। अपना ख्याल रखिए, थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए एंड म्यूजिक ऑन रखिए। मिलते हैं अब शुक्रवार को। यस, टेक केयर, टाटा।

0: बताओ।
1: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या late night binge watching.
0: Healthy खाओ, protein खाओ.
1: Healthy munching का perfect partner. आप सिर्फ एक क्लिक दूर.
2: GG.
1: Krishival nuts only on GGmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana. और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
3: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
4: जीजी
3: Krishival nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे wholesome healthy options.
4: जीजी मार्ट, your personal grocer.
5: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the devotional hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti subah 6 baje se.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice.
2: The morning show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out. Josh mein
5: raho. Mere Karan Arjun aayenge.
6: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: का पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें। Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे
2: दे आर फ्रेश। They are...

0: charts to ruling the countdown. ये है मस्ती टॉप 20. Now pumping up your Thursday evenings 5 PM onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. Josh Mehra.
1: 10 का 20
2: अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा.
0: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है. टाइम टू रेज द बार. मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 PM onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: DJ

0: शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: गाना चाहिए, आप बोलो हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से। समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स,

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट
3: Thank you.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे
2: Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
5: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
6: I love you, रसना।
5: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, Musti 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Musti 24/7 Live.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है? ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
2: मुझे चांद पे ले चलो।
1: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू
3: रात

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
1: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

0: मेरा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज़ ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर
1: सुनो ना सुनो ना सुनो ना अगले 3 घंटे के लिए मुझको हम सफर चुन लो ना हो वाह वाह वाह वाह वाह जब बहुत ज्यादा जिस दिन मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है ना उस दिन मैं ऐसे देखो आपका स्वागत गाते हुए मतलब इट्स वेरी रेयर. यूजुअली मैं बिल्कुल गाना नहीं गाती हूँ क्योंकि मुझे बोल दिया जाता है कि अंतरा चुप गाना नहीं गाना है. ठीक है तू बोलते हुए ही सही लगती है. रेडियो मस्ती 24/7 मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ बिल्कुल पहुंच चुकी है. गुड इवनिंग नमस्ते इट्स वेंसडे दैट इज राइट भाई. सितंबर 16 हो गई है आज 5:06 हो चुके हैं शाम का वक्त है एंड वी ऑल आर डीलिंग विद समथिंग और द अदर. कुछ ना कुछ जो है लाइफ में चलते रहना चाहिए ये कहने वाली बात होती है लेकिन जब वो चल रहा होता है तब वो चलाया नहीं जाता है. तब लगता है कि नहीं यार मतलब इतना भी एक्साइटमेंट या इतना भी एडवेंचर नहीं ही मांगा था हमने. बट क्या है कि भाई आहो जी आहो हमारे योगेश जी जो है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं. योगी वेर बताओ सही में ना हम ऐसे कहते हैं कि मतलब कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए फिर जो चल रहा होता है वो देखा नहीं जाता है. वो कुछ ऐसे हालात चल रहे हैं कि क्या ही बताए बट ठीक है गणपति बप्पा मोरिया सब सब कुछ हम कर लेंगे. वी शैल डू एनीथिंग. आई थिंक हमारी जनरेशन एक ऐसी जनरेशन है दैट वी हमें ना हमारे सर्वाइवल स्किल मोड इतनी ज्यादा अमेजिंग है हमें एक प्लैनेट में कहीं भी डाल दो है ना कैक्टस के जैसे हम सब कुछ कहीं पर भी रह लेंगे हम. ओ गॉड सो वेल ये था आपको समझ में मूड ऑफ द डे तो समझ में आ ही गया होगा बट आप अपना बताएं दैट हाउ हैज बीन योर डे कैसा रहा सुबह से मतलब हाउ हैज you know your work been या फिर घर पे कुछ हुआ या फिर you know घर in fact the people who are there या तो work from home कर रहे हैं या फिर you know घर पे से जो है operate कर रहे हैं और घर चला रहे हैं and everything भाई उनकी जिंदगी में भी all the time कुछ ना कुछ you know ऐसा लगे रहता है just because you know we can't see them outside talking about it as well. we all shall this too shall pass we all will do well that's what I wish for each one of us. This small town girl is gonna play ganas for you and zara ekatra karti hu. Ek to apni coffee lekar aati hu. That's right, iced americano. That's the yeah. I know. Chai peene wale iced americano pee rahe hain. Kya hi bataye? Chal hi raha hai. Well, ek acha sa musical break lete hain and fir aate hain wapas aaj ki pehli taaza khabar ke saath on Radio Masti 24/7. Good evening.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड. टिकट $60 ऑनवर्ड्स. कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0. इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया.
3: It's a Musty Partner event.
4: Healthy खाओ, protein खाओ. Healthy खाओ, protein खाओ.
5: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग.
4: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ. हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ.
5: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर.
6: जीजी
5: Crushable nuts only on GGMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे wholesome healthy options.
6: GGMart, your personal grocer.
7: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek blues on Radio Musti 24/7. Aao, mood change kare.
8: भाई अगर कोई ईरानियों के जैसे तैयार भी होता है और कोई कह दे कि भाई ये है हमारे इंडिया से रिप्रेजेंट कर रही हुई क्वीन, आई थिंक ना नो नॉट कंगना रनौत, दैट इज नीता अंबानी. बाय गॉड की कसम, उनकी ज्वेलरी देखकर जो दिल कहता है, दिल कहता है कि बेटा तेरे पास तो नहीं आने वाली है बट तू देख ले, जी भर के देख ले, मजे ही आ जाते हैं. लाइक सीरियसली वाला 5:00

लेकर हाथ चले तो फिर बात ही कुछ अलग हो जाती है. Why suddenly I'm talking about it, भाई नीता मानी जो है हाल ही में गणेश चतुर्थी के सेलिब्रेशंस में दिखी और उनका हार देख के आंखें खुली की खुली रह गई. एंड शी कमांडेड ऑल द अटेंशन एंड राइटली सो. एंटीला में अपने घर पे इन्होंने रखा हुआ था. सो उनका नेकलेस जो है जिन्होंने देखा है उनको पता है इट्स अ बिब काइंड ऑफ, जो बच्चों की बिब होती है ना एकदम कवर करती है जहां जहां, उतना बड़ा आप उनके जो है शोल्डर टू शोल्डर जो है नेकलेस समझ लीजिए. इट्स अ स्टेटमेंट पीस. उसको नाम दिया गया है आम्रपाली भारतम. जो है इट्स वन ऑफ इट्स kind creation, of course crafted almost entirely from antique and vintage Indian jewelry. कहा जा रहा है उनके एक एक element जो है was sourced from a different corner of the country over 3 years. 3 साल लग गए and then painstakingly 6 महीने लग गए इसको बनाने में. 14 मास्टर कारीगर्स जो है वर्क्ड ऑन दिस वन पीस. एंड द ट्रेडिशनल ये केरला नेकलेस एंकर्स द सेंटर जहां पे फिर नीचे झूमर भी दिखता है, साउथ इंडियन नट्स भी दिखती है, एक पासा भी दिखता है इसमें. एंड देन मॉन्यूमेंटल इयररिंग्स एंड बिलास एंड चांद बालीज एंड ऑल आर रीइमेजिन विद इन इट्स architecture. Aur her element was so carefully studied apparently and aligned and balanced with the missing links and the settings individually jo handcraft kiye gaye to preserve the continuity and the character of this one solid piece. And more than a necklace, Amrapali Bharatam jo is necklace piece, neck piece ka naam hai, it's a work of wearable art, elaborate gold ki craftsmanship, and it has been layered with multi strand of pearl beads and kundan and pearl ke settings and ruby red and एमरल्ड ग्रीन मीनाकारी के एक्सेंट. मैं कितना भी बोल लू भाई, डूड यू हैव टू गिव दिस टू नीता अंबानी. शी इज अ क्वीन, शी इज ट्रूली अ क्वीन. मैं तो सिर्फ उनके, मेरे तो नजर ही नहीं हट रही है नेकलेस से. हाँ कुछ नहीं, गाना प्ले करो. हम इससे रिच हैं, हम म्यूजिक रिच हैं. या दैट्स राइट, वेरी गुड अंतरा, दैट्स हाउ वी शुड गो अबाउट इट.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: Aamir Khan wondered.
2: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
1: Salman Khan wanted answers.
3: Kaise kiya ye?
1: R. Madhavan said.
4: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
1: And Boman Irani?
5: I say this with great respect. This is actually, it's blown my mind.
1: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
6: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
1: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave Spellbound with Suhani Shah.
7: How do you know these things? Stop reading my mind.
0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
8: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. Yeh hai Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kar change.
9: अरिजीत दादा अभी भी काम कर रहे हैं? एक मिनट अरिजीत दादा, मुझे ये बताए कि ये क्या चल क्या रहा है? आपने कहा था कि आपको ब्रेक चाहिए, ये कौन सा वाला ब्रेक चल रहा है आपका? रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ यहाँ पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज। भाई कोई ब्लूज नहीं है हमको, बिल्कुल भी कोई ब्लूज नहीं है। बट यस, कुछ ऐसी ऐसी बीच बीच में मार्केट में खबर आती रहती है तो फिर लगता है कि चल क्या रहा है। सो कुछ टाइम पहले ही ऐसा कुछ सुनने को मिला कि यू नो अरिजीत सिंह इस वाले प्रोजेक्ट के लिए गाना गा रहे हैं, कर रहे हैं। फिर उनसे बहुत सवाल किए गए तो ये पता चला कि ये तो वो वाले प्रोजेक्ट्स का जो ऑलरेडी इनके कमिटमेंट्स थे वो सारे कंप्लीट कर रहे हैं। तो भाई कितने, आई थिंक अरिजीत सिंह इज सेटल्ड फॉर द नेक्स्ट 5 years, मे बी इतने कमिटमेंट्स हैं उनके ऑलरेडी कंप्लीट करने के लिए। सो वेल, किंग मूवी राइट, शाहरुख खान एंड द एंसेंबल स्टार कास्ट, एंड धीरे धीरे जो है जैसे जैसे वक्त बढ़ता हुआ जा रहा है तो उनकी बस भी जो है बढ़ती हुई जा रही है। सो शाहरुख खान जो है हाल ही में जो है ही हैज कन्फर्म्ड दैट अरिजीत सिंह हैज अ सॉन्ग इन हिज मच अवेटेड फिल्म। एंड उनका एक बीच में चलता रहता ना आस्क हैशटैग आस्क SRK वाला सेशन, तो वहां पर एक फैन रिक्वेस्टेड SRK टू रिलीज एक ट्रैक तो दे दो हमको। बट हमारे सुपरस्टार किंग खान जो है उन्होंने रिवील किया दैट अरिजीत सिंह इज स्टिल गिविंग इट द फिनिशिंग टचेस, कॉलिंग द सिंगर अ परफेक्शनिस्ट। एंड ही सेड दैट इट लाइक आई मीन राइटफुली टेक्स सम टाइम जब परफेक्शन को आप अचीव करना चाहते हो। ही ऑल्सो कन्फर्म दैट किंग रिमेन्स ऑन स्केड्यूल फॉर इट्स December 24th, 2026 का थिएट्रिकल रिलीज। तो फिर वही है ना, हम भी कंफ्यूज ही हो गए कि क्या चल रहा है भैया। ठीक है यार, एज लॉन्ग एज आई लाइक वी लव अरिजीत सिंह, हमारी प्लेलिस्ट में कभी ऐसा नहीं होता है कि अरिजीत सिंह का एक गाना हमने नहीं प्ले किया हो। सो वेल वेल डिजर्व्ड, मे वी कीप ऑन गेटिंग हिज ऑल हिज प्रायर कमिटमेंट्स जो वो कंप्लीट करते रहे फॉर अ गुड लॉन्ग टाइम, डोंट यू थिंक सो? इसी बात पे हो जाए अरिजीत, हो जाए।

0: पॉड, क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरल पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th to 18th September, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड, फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026।
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSE Auditorium, Tessensen Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 81382790. Ishq Sufiana, mera. Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
2: It's a Masti Partner event.
0: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
3: आइए कुछ सूफियानी बातें हो जाए, है ना? क्या व्हाट इज द सूफियानी बातें? बट मैं कुछ भी बोलती हूँ कभी कभी, सीरियसली। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा आपके साथ और यहाँ पर चल रहा है क्या मिडवीक ब्लूज। दैट इज राइट, वेंसडे वाला हमारा दिन है और भाई इस इवेंट की तैयारी भी काफी काफी जोरों शोरों से चल रही है। अमित धमेलिया जी का एक ऐसा ये नाम है विच हैज बीन अ पार्ट एंड एसोसिएशन हमारे साथ, उनका बहुत ही शानदार हमेशा से ही रहा है। वी हैव प्रमोटेड इश्क सूफियाना बिफोर एज वेल, जब इनके पहले दो एडिशन हुए थे। एंड वाई नॉट, बिकॉज भाई जब भी सिंगापुर में कोई भी बहुत कमाल की चीज होती है, वी हैव टू कम एंड अपडेट यू अबाउट इट सो दैट योर वीकेंड्स कैन गो लाइक उफ क्या ही, मतलब कितना अच्छा था। थैंक यू सो मच। एंड वी हैव गॉट दीज काइंड ऑफ मैसेजेस व्हेन एवर समबडी हैज अटेंडेड इश्क सूफियाना परम स्वरम आर्ट प्रेजेंस। इनका थर्ड एडिशन जो है इज गोइंग टू बी अप वेरी वेरी सून, विच इज 26th of September, इट्स अ सैटरडे। 7 बजे से ये शुरू होगा एंड इट इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल विद दोस सोलफुल वॉइस एंड द सूफी फ्लेवर एंड ब्यूटिफुल लाइव म्यूजिक का मैजिक। भाई ऑडिटोरियम सिविल सर्विस क्लब टेसेंसन में होने वाला है। देर आर टू टिकट के कैटेगरीज, वन इज $60 एंड द अदर वन इज $80। बुकिंग इज सिंपल, यू कैन जस्ट पे नाउ टू 81382790। जस्ट इन केस इफ सूफी म्यूजिक इज योर थिंग एंड यू नो लाइव बैठ के सुनना एंड सम अनवाइंड करना उन्हीं के साथ साथ, देयर इज नो बेटर थेरेपी देन दिस वन। बट वेल, एक तो हो गया कि ये डायरेक्ट आपने जो है बिल्कुल पे नाउ करके अपनी टिकट्स ले सकते हैं, बट इफ यू वांट टू विन इट एंड आपको वो अच्छी सी फील आएगी कि हम सवाल पूछो जवाब देंगे। ऑलराइट, हियर वी गो। मैंने ये सवाल पहले पूछा हुआ है बट आई एम सो क्यूरियस। ओके, आई वॉन्ट यू टू टेल मी, मुझे 3 हिंदी सूफी गाने जो है, 3 नाम लिखकर जो है बिल्कुल भेज दीजिए अभी के अभी 9151896। दैट्स ऑल आई आस्क यू। या यू नेवर नो कि जो 3 आपने गाने भेजे हैं, जस्ट इन केस आप जीत भी गए, आप वहां पे जाए और वही गाना जो है वहां पे जो बिल्कुल सुना दिया जाए तो एकदम ऐसा नहीं लगा कि यूनिवर्स ने कॉन्स्पायर किया है। इट्स जस्ट गोइंग टू मेक यू हैप्पी, बट व्हाट विल मेक मी हैप्पी, योर आंसर्स जल्दी से भेजिए, जल्दी से 9151896। 3 सूफी गाने, उनके नाम। या दैट्स हाउ यू कैन बर्न।

0: पीछे।
1: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
2: एक 84 ईयर ओल्ड अगर बोल रहा है कि आई एम गोइंग टू रिटायर, ऑफ कोर्स वी विल बी लाइक या या या वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड, यू कैन, यू मस्ट रिटायर, यू हैव वर्क्ड इनफ, बिल्कुल। बट देन कम्स द इंग्लिश। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा आपके साथ मिडवीक ब्लूज यहाँ पर चल रहा है। मैं कहती हूँ कि कभी कभी तो ये कन्फ्यूजन मुझे भी हो जाता है, बच्चन साहब क्या ही बताए, बट ठीक है, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं आपकी बात भी, बिकॉज वी लव यू सो सो वेरी मच। सो वी ऑल नो दैट बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन जी जो है वो अपना एक ब्लॉग मेंटेन करते हैं, एंड द डेडिकेटेड फैंस दे रियली रियली फॉलो एवरीथिंग इन दैट, एंड समटाइम्स आई थिंक दैट ही डज दिस डेलिबरेटली जस्ट टू कीप दैट इंटरेस्ट गोइंग ऑन। तो हाल ही में जो है बच्चन साहब ने अपने ब्लॉग में लिखा दैट टाइम टू रिटायर करके उन्होंने वो चीज वहां पे खत्म कर दी। अब ऑब्वियसली एवरीबडी जस्ट लाइक मी, ओके, वी थॉट दैट ओके, मतलब बट दिमाग में ये सवाल भी आया दैट यू नो अक्सर बच्चन साहब बात करते रहते हैं दैट ही इज़ नोवेयर नियर, यू नो काम उनको करना ही करना है बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग ही नोज, इट कीप्स हिम एक्टिव एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड सडनली ही इज सेइंग टाइम टू रिटायर, विच इज़ ओके, वी कंप्लीटली रिस्पेक्ट योर डिसीजन, बट देन क्या हो गया बाद में? इतनी सारी स्पेक्युलेशन हो गई, सब ने बात कर ली, सब ने कह दिया नहीं सर आप नहीं जा सकते, सर नहीं मत जाइए, सर नहीं आप हम रिटायर नहीं कर सकते, मतलब डिवाइड हो गई इंटरनेट कि नहीं तुम उनको रोक नहीं सकते हैं, उनकी उम्र हो गई है, तुमको समझना चाहिए, अब वो करना चाहते तो एक मिनट, बच्चन साहब को फिर क्लैरिफिकेशन ब्लॉग लिखना पड़ा कि इन इंग्लिश टाइम टू रिटायर मीन्स गोइंग ऑफ टू बेड, या जस्ट रैपिंग अप योर डे, सो दैट्स व्हाट ही मेंट। And he also mentioned that he is nowhere near retirement. Kaam se wo off nahi hi lene wale hai. And I went like, okay, I should just not say anything to myself. I should just play the song coming up next on Radio Masti 24/7 Live. Good evening.

0: का पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: क्या कुछ नहीं चल रहा है आजकल, चलिए बताते हैं. रेडियो मस्ती 24/7 छह बजे के उस पार बिल्कुल पहुंच चुके हैं. मिडवीक ब्लूज हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं. लेकिन क्या है ना, शाम तक आते आते वेंसडे को वो ब्लूज थोड़े से हो जाते हैं कम. उसका रीजन ये है कि हमें लिखने लगता है कि भाई फ्राइडे आने वाला है, कोई नहीं ये समय भी कट जाएगा. बट वेल, देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड. भाई जहाँ पे हम अक्सर यू नो आई थिंक मोस्टली मस्ती मैडनेस हमारा जो शो होता है उसमें हम बात करते हैं कि जापान में ये रेंटिंग सर्विस शुरू हो गई है, वहां ये रेंटिंग की एक बंदा आपके साथ घूमता है जो कुछ नहीं करता है. Yeah, so he does nothing but he earns doing nothing. Then you can rent a grandfather, you can rent this. I think धीरे धीरे ये trend अलग अलग जगहों पे जो है लोग आजमाइश करने की कोशिश पूरी चल रही है. तो अगर भारत में आपको लेकर जाऊं तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही services जो है वो बिल्कुल provide करने की ऐसी बात की जा रही है. See, नवरात्रे आ रहे हैं right? और हम लोग ये गरबा और ये सारी चीजें और थोड़े दिनों में ये सारी बातें भी शुरू हो ही जाएगी right? सिंगापुर गुजराती सोसाइटी का गरबा एंड देन ये भी इंटर्स का गरबा एंड एवरीथिंग डांडिया का. सो व्हेन वी गो टू ऑल दीज प्लेसेस ईदर यू हैव अ गुड यू नो फ्रेंड सर्कल या ग्रुप, या फिर अगर आप अकेले होते हो आपका मन नहीं होता, मन होता है जाने का बट फिर आप सोचते हो कि हमारे साथ तो कोई है नहीं, देन यू कैन रेंट गरबा पार्टनर. दैट्स व्हाट जो है एक पैकेज जो एब्सोल्युटली वायरल जा चुका है. सो इट सेज रेंट अ गरबा पार्टनर दिस नवरात्रि, डोंट डांस अलोन. भाई ने तीन जो है अलग अलग कैटेगरीज दे रखी है, आपकी श्रद्धा अनुसार आप उस पर खर्चा करें. ठीक है, सिल्वर कैटेगरी 1000 रुपए की, ठीक है, 2 घंटे गरबा करेंगे, मैचिंग आउटफिट पहनेंगे, आई विल टीच यू बेसिक स्टेप्स, ऑकवर्ड क्यूट सेल्फीज भी लेंगे. फिर आता है गोल्ड 1500 रुपए का, 4 घंटे का गरबा करेंगे, क्यूट बैक स्टोरी जो है वो मैं दूंगा, हाउ वी मेट, मैचिंग आउटफिट्स के साथ रील्स एंड फोटोज आपके इंस्टा के लिए, कॉल योर फ्रेंड्स भाई एंड भाभी, ये ऑप्शनल है. ओके, आई एम लविंग दिस गाय ऑलरेडी. एंड देन कम्स दी प्लैटिनम पैकेज भाई का 2000 रुपए में, ऑल डे करवा करेगा इसमें, एंड आई विल शो यू द बेस्ट डांस मूव्स, आई विल किस योर फोरहेड आफ्टर द गरबा, हेल्प यू विथ योर दुपट्टा एंड झुमकास एंड गेट यू होम सेफ और टू द आफ्टर पार्टी. भाई साहब, आई लाइक इट, आई रियली रियली लाइक इट. बंदे ने बहुत सारा जो है सोच के एफर्ट डाल के ये जो है बिल्कुल डाला हुआ है, एंड फॉर द राइट रीजंस इट हैज गॉट एब्सोल्युटली वायरल. अच्छा लगता है यार ये लाइट, सारी लाइट लाइट चीजें जो है देखने में, जब सोशल मीडिया पे इतना सारा कुछ चल रहा होता है. और अभी तो मेरा AI जो हो रखा है मैं आपको तो बता भी नहीं सकती हूँ, किसी को जानना हो तो पूछ लो मुझसे 9158963 पर. वेल, हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव ऑन. कुछ अच्छे अच्छे गाने प्ले करते हैं आपके लिए, मेरे लिए, हमारे कानों के लिए और हमारी अच्छी अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए. एंड देन आई विल बी बैक और फिर बताते हैं क्या करना है. गुड इवनिंग.

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.
1: Saturday night का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक. जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर. भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची. गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक. 26 September, Engage Theatre 2, Suntec, Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
2: It's a Masti Partner event.
3: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
4: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Sham ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
3: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
4: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
2: GG.
4: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana. और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस.
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर.
5: टेक अ ब्रेक, लाफ अ लिटल.

इसका एड चल रहा था एंड यू नो द स्टोरी बिहाइंड दीज दिस भाई बहन. एक तो भाई बहन एक चीज पे अग्री करे बिना लड़े आई थिंक वो एडल्टहुड आने के बाद ही, और जब उसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाए तभी वो अग्री कर सकते हैं. नहीं, जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग. सो वेल, हमारे ये जो बैक स्टेज सिबलिंग्स हैं कोलकाता में, एक दिन बैठ के दोनों भाई बहन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे एंड दे स्टार्टेड सिंगिंग सम भजन. सो अपेरेंटली किसी ने तो उसका वीडियो बना दिया एंड वीडियो बना के नेक्स्ट डे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया. द वीडियो वेंट वायरल दैट लाइक इतने यंग लोग कैसे इतना खूबसूरत भजन गा सकते हैं, ऑल दोस थिंग्स. वहां से जो इनकी गाड़ी शुरू हुई एंड देन दे ऑफकोर्स जो अपने अपनी नौकरियों में थे दे टुक अ वेरी बिग कॉल एंड अ स्टेप की अब मे बी दिस इज द कॉलिंग एंड दिस इज वॉट वी आर सपोज टू डू. तो फिर वो उन्होंने बैकस्टेज सिबलिंग्स करके अपनी जोड़ी को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस ऐसे करके रख दिया, जहां पे इन्होंने कहा कि हम सब साथ में जो भी करेंगे साथ में करेंगे. तो इनके अगर आपने इंडिया के कॉन्सर्ट्स वगैरह भी, जो कि बहुत सारे जगह पे हो चुके, इनफैक्ट एवरीवेयर इट हैज गॉन सोल्ड आउट, बी इट कोलकाता, बैंगलोर, दिल्ली, दुबई, ऑल एवरीवेयर, लाइक पीपल आर अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्सर्ट. दैट इज वाई इनका जो भजन जामिंग और ये भजन बैठक बोल दीजिए, जहां पे हर कोई इन्वॉल्व रहता है, जैसे मोहल्ले में होती है ना बैठक की, एवरीबडी, एंड दैट इज द होल कॉन्सेप्ट. एंड आई थिंक इट इज एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट एंड ब्यूटिफुल एट द सेम टाइम. आई एम सच अ नॉस्टैल्जिया सपोर्टर, सो ऑब्वियसली. बट अब जब भजन जैमिंग करने के लिए एन इवनिंग ऑफ दिस बैक स्टेज सिबलिंग्स सिंगापुर में जो है ये लाइव आने वाले हैं, विच इज ऑन 26th of September. भाई सिस्टिक पे जाके मैं तो कहती हूँ कि टिकट अपने बुक करा ले, ठीक है. एंड यू विल नॉट बी लाइक आपने आपको अगर मिस कर दिया ना तो सच्ची में बहुत ऐसा लगेगा कि यार बहुत ही अच्छी कोई चीज मिस कर दी है. सो वेल, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट, जहां पर आप भजन जैमिंग कर सकते हैं. मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रही हूं क्योंकि मुझे सवाल ही इनके नाम से करना है. आई वॉन्ट यू टू गो एंड फाइंड आउट इस भजन जैमिंग के लिए बैक स्टेज सिबलिंग्स के ये जो नाम है. इफ यू वॉन्ट टू विन अ टिकट यहां पर मेरे पास से, तो आप मुझे ये बताइए कि जिसकी बात मैं कर रही हूं यहां पे, बैक स्टेज सिबलिंग्स, ठीक है, ये भाई बहन जो है इनका नाम क्या है. एंड मैं कोई ऑप्शन नहीं देने वाली. आई वॉन्ट यू टू फाइंड आउट एंड आंसर मी 9158963 पर इफ यू वॉन्ट टू विन टिकट्स टू बैक स्टेज सिबलिंग्स का ये लाइव इन सिंगापुर जो होने वाले हैं 26th of September को सनटेक सिंगापुर में, इंगेज थिएटर. इट इज जस्ट गोइंग टू बी एब्सोल्यूटली माइंड ब्लोइंग. एंड मैं चाहती हूं कि आप इसका हिस्सा बने, आपके फ्रेंड्स फैमिली, क्योंकि इनकी रेंज, एज रेंज ही इतनी है कि 18 साल से लेकर 80 to 90 ईयर्स आपके दादा दादी. So just imagine a place where all the generations can go together and vibe on the same tune. Isn't it amazing? I think it's amazing. Yeah, go for it. Tickets jeetne hain, to ye jo backstage siblings hain, ye bhai behan ka naam mujhe dhoond ke likh kar bhej dijiye 9158963 par.

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक। बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: गणपति बप्पा
3: तैयार हो सिंगापुर, क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026।
4: आया देखो आया बप्पा मोरिया।
3: हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th टू 18th सितंबर, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड, फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026।
5: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
0: If you have still not been to the Farrer Park Holiday Inn के बगल में जो ग्राउंड है वहां पर जहां पे गणपति जी स्थापित है महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर से, you must visit once। चाहे आप ऑफिस से वापस लौटते वक्त करें या फिर स्पेशल प्लान बनाकर जाकर एक बार वो जो इतनी खूबसूरत, इतनी ही प्यारी बप्पा की मूर्ति वहां पे जो विराजमान है, you have to go and just kind of really meet him in person, right? तो well, make sure. And all thanks to Maharashtra Mandal Singapore for doing this. And वहाँ पे जाएंगे तो not only this, I think there are so many other things also to do. So दिल ना बहुत खुश हो जाएगा, so जरूर जाएं। और उसी के साथ जिस चीज के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ यानी कि ट्रैफिक अपडेट देने, let's give you that। एक यहाँ पे हैवी ट्रैफिक की खबर है ऑन KJE towards VKEH Ashukang Way exit। एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन नॉर्थ ब्रिज रोड towards स्टैमफोर्ड रोड आफ्टर ब्रासवसा रोड, अवॉइड करें लेन नंबर 1। और कुछ इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे, कोई पेड़ वहां पे जो है थोड़ा सा गिरा है ऑन AYE towards it was after लोअर डेल्टा रोड। सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। उसी के साथ साथ जो है बापा की जब बात करती हूँ तो आई फील गुड, गाना भी कुछ ऐसा कह रहा है, आई फील गुड, लेट्स गो।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज़ ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर
1: Don't know why I feel good, I feel good. Yes, Wednesday तक I feel good हम लोग करने लगते हैं. Radio मस्ती 24/7 Anthrop के साथ यहाँ पर चल रहा है क्या Midweek Blues. भाई जिंदगी में ऐसा बहुत बार आपने भी ये चीज फील की होगी जब हम किसी भी सिचुएशन के एकदम अति पे पहुंच जाते हैं, लाइक टोटली ऑन द एज, जहां पे हमें लगता है कि यार अब यार इसको छोड़ ही दे, अब इसके बाद तो क्या ही होगा, जस्ट लीव इट. Maybe that is, and mostly it is that moment when आपकी जो पूरी जिंदगी है वो पलट जानी होती है. It is someone's story which I am going to tell you and it is absolutely very very special. So well, एक unexpected opportunity जो है किस तरह से change कर सकती है direction of an entire life. Composer धीरेन्द्र मुल्कालुवर जो है इनकी बात मैं करने वाली हूँ. You must have heard about this film called हनुमान अंश. It's doing really, really well box office and everybody has loved it. Neem Karoli Baba ke upar jo hai. So, ye hai unke music composer. Isi ka. So, well, ye jo Dhirendra inke jo composer hai, jab inke paas ye wala offer aaya, he was and he felt very ready to leave Mumbai at that point of time. Ye music quit karne wale the. But, tabhi, हनुमान अंश जो है ये इनकी जिंदगी में आई एंड इट चेंज्ड एवरीथिंग. जस्ट इमेजिन उस इंसान के दिमाग में क्या ही चल रहा होगा. इन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा था कि चलो ये कर लेता हूं, आया है उसके बाद तो फिर अब मैंने सोच ही लिया है, मना ही लिया है दिल को कि अब इसके बाद और मैं कुछ नहीं करूंगा बिकॉज मेरा कुछ नहीं होने वाला है और मेरा कुछ नहीं हो रहा है. एंड देन हनुमान अंश हैपेंड एंड देन इट डिड वेरी वेल. एंड कहते हैं ना, बस वो एक पड़ाव जो है वही इंपॉर्टेंट होता है और वो पार कर लो तो सब कुछ जो है आपकी कहानी बदल जाती है. सो सक्सेस ऑफ्टन कम्स विद आफ्टर द मोमेंट्स व्हेन वी आर क्लोजेस्ट टू क्विटिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप बिलीविंग, वी कीप क्रिएटिंग एंड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वन लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी. और मैं तो बहुत ही ज्यादा मानती हूँ इसमें. मेरी कहानी भी बहुत सारा कुछ जो है सिमिलर है इस बात से, इस पॉइंट से, जहां पे आई वाज आल्सो ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग सम थिंग्स एंड देन आई वाज लाइक कि ठीक है जस्ट गिव इट सम टाइम एंड थिंग्स चेंज्ड एंड दैट इज व्हेन थिंग्स चेंज. है ना, बहुत ज्यादा हैवी हो गया सडनली. बट देन आई रियली रियली लव्ड द स्टोरी अबाउट हिम एंड आई वाज लाइक कि यार इनके बारे में तो बात करना बिल्कुल बनता है. वेल, इसी बात के साथ ये जो है अपने गानों की बात को आगे बढ़ाते हैं. एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7.
2: तुम तगिन दिग तगिन तगिन दिग तगिन दिग तगिन तगिन

0: ऐसा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर
1: 705 by the studio clock. गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया. भाई कुछ भी कहो, ये जब जब आरती होती है और जब जब गणपति बप्पा के गाने बजते हैं, ओ माय गॉड, द फीलर इज सो सो सो वेरी गुड, इजंट इट. पहुंच चुके हैं 7 बजे के उस पार, गणपति बप्पा मोरिया बोलते हुए बिल्कुल यहाँ पर एंट्री मार चुके हैं. हाँ, मेरे भी ग्लूज चल रहा है. मैं हूँ आंसरा यहाँ पर आपके साथ. एंड भाई बप्पा की आरती अभी अभी जो है वो हो गई यहाँ पर. एंड उसी के साथ साथ मुझे याद भी आया, सो वेल आई वाज अबाउट टू टेल यू दैट व्हाट माय फ्रेंड्स क्या रील उन्होंने भेजा. एंड दे सेड दैट दैट पर्सन इज एब्सोल्युटली पी. तो द रील सेड बेसिकली दैट दीदी वैसे तो हर चीज में बहुत ज्यादा एडजस्ट कर लेती है, नो प्रॉब्लम शी हैज. बट अगर दीदी को कोई कह दे कि तुमको तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, तो फिर दीदी ठीक एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट करती है. And that Didi is me. That was the real. Okay. And every single person in that group was like, we have only one name in the mind, and that is, this is so very Antara. And I was like, yeah. उस टाइम पे तो मैंने जोश जोश में उनको कहा था, अच्छा तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, ये वो कुछ भी बोल दिया मेरे. But later in the night I was thinking कि यार बात तो ये सही ही कर रहे हैं. I am that kind of a person. कि ऐसे तो मुझसे कुछ भी करा लो, I will move mountains for you. But if you tell me that करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं कह रहा हूं या मैं कह रही हूं, and मतलब गर्दन पकड़ के मुझसे कभी कोई किसी ने भी काम नहीं करवा पाया है आज तक तो, and I don't think so for the rest of my life anybody would be able to do that because that's just me who I am. Do you also feel the same? आपको भी लगता है दैट दीदी इज मी, सो वेल गुड गुड ऑन यू, यू नो मी वेरी वेल, आई एम ग्लैड. बट आरती के होते होते एक और चीज याद आई. भाई सलमान खान का अपने वो वाला वीडियो देखा है, सलमान खान अपनी बहन जो है उनके यहाँ पे पहुंचे गणपति की पूजा के टाइम पे, आरती के टाइम पे उनको थाली पकड़ाई गई. सो कई बार होता है यार, एंड देयर इज नथिंग टू फील बैड अबाउट इट. तो उन्होंने आरती करने के लिए जो है, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज. सो ही जस्ट काइंड ऑफ ही वेरी नेचुरली स्टार्टेड एंटी क्लॉकवाइज, एंड तभी जो है उनकी बहन ने बिल्कुल क्राउड में से आके कहा कि ना ना ना ना, यू आर डूइंग इट रॉन्ग, डू इट दैट लाइक क्लॉकवाइज. एंड ही इज लाइक, ओ अच्छा, ओ सॉरी सॉरी. एंड देन ही डिड दैट. एंड ये बहुत ही क्यूट सा मोमेंट जो है वो कैप्चर भी हो गया. कई बार होता है, आई फेल्ट इट टुक मी बैक टू दोस टाइम्स जब मम्मी लोग हम लोग को सिखा रही होती है ना कि भाई ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं. हाउ डू वी नो टुडे, बिकॉज वी ऑलवेज हैड आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स इन द फैमिली हु टोल्ड अस दैट हाउ टू, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट. सो या ऐसा ऐसा भी होता है, ऐसी क्यूट क्यूट चीजें भी होती है. एंड यहाँ पे सलमा कह रही है, यस द दीदी इज यू एंड द दीदी इज मी टू. आई एम श्योर वी शुड ऑल बिकम दोस दीदीज. या कोई हमें कुछ बता के कुछ नहीं करा सकता, है ना. चलो फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और बता के गाना प्ले कर रही हूँ शफकत अमानत अली एंड सुनिधि चौहान कमिंग अप नेक्स्ट.

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते हैं।

हुजूर तुमको ले चले जादुई दुनिया पे। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर ट्रंप के साथ 7:23 हो चुके हैं। स्टूडियो क्लॉक में भाई जादू की दुनिया और जादू का ये जो स्मार्टनेस है, आई थिंक जस्ट इफ इवन इफ आई कैन हैव 0.1% ऑफ व्हाट सुहानी हैज, ओह माय गॉड, क्रेजी ही हो जाएगा। सी, मेरे में अपनी बहुत सारी खूबियां हैं, बिल्कुल मैं मानती हूँ, एक्सेप्ट भी करती हूँ, बट यहाँ मेरे को बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। मेरे को, आपको पता है ना, मेरे को कूल चीजें बहुत ज्यादा कूल लगती है। द वे सुहानी शाह, सो सुहानी शाह के मैं बारे में बात कर रही हूँ, शी इज द मेंटलिस्ट एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज शी इज गोइंग टू बी हेयर लाइव इन सिंगापुर 20 तारीख को जो है उनका शो है एंड ओनली फ्यू डेज आर लेफ्ट, फ्यू टिकेट्स आर लेफ्ट एंड यू शुड मेक श्योर दैट यू हैव वन। अगर नहीं है तो फिर अब हम क्या ही बताएं आपको इस बारे में। बट वेल, even before that I knew who she was and I used to follow her and her videos as well and I used to be amazed with the fact that yeah ye to bahut hi smooth hai whenever she does it whatever she does aap usko kuch bhi bula lo kehte na ki jadugar ki jo tricks hai na wo janna bhi zaruri nahi hai because that is this is that one second ka wo jo kuch seconds ki khushi jo aapko excitement and wo adrenaline rush milta hai na ye jankar ki oh my god How did she figure that out? कैसे मतलब कंधा टच करने से उसको पता चल जाता है कि अगला बंदा क्या सोच रहा है, इज इट दैट? जबकि आपका दिमाग ये कह रहा होता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आई एम श्योर दैट देर इज सम इल्यूजन, देर इज सम ट्रिक टू इट, कुछ होगा, बट देन योर हार्ट इज लाइक इट स्किप्स अ बीट एंड यू गो लाइक ओ ओ हाउ इट्स क्रेजी, डोंट गेट इन टू माई माइंड। दीज आर द काइंड ऑफ रिएक्शन सुहानी शाह has always got. And I think a big thank you to Wondersoul Escapades and Epic Encounters because they always get these amazing artists in Singapore so that we get to know, we get to experience all of these things. So, bhai, Suhani Shah aane wali hai 20 tarikh ko. Bas, wo date kaafi hi kareeb hai, wo aa hi gayi, keh sakte hai. And, bilkul, aapne agar tickets nahi karai hai, to stick pe jaakar fatafat se ticket apni kara lijiye. Agar aapko discounted वाले रेट्स चाहिए हमारा प्रोमो कोड यूज करके तो जस्ट लेट मी नो 9158963 पर एंड आई विल सेंड यू दैट लिंक एंड अगर आप

ने जो है यहाँ पर आप जीतना चाहते हो, अभी भी वो मौका पाना चाहते हो सुहानी शाह के इस शो के टिकट को जीतने के लिए, देन इजी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. इतनी देर में मैंने सब कुछ बता दिया कि भाई 20 सितंबर को वो आ रही है, स्पेल बाउंड लाइव सुहानी शाह, ऑल ऑफ दोस थिंग्स आई हैव टोल्ड. व्हाट आई हैव नॉट टोल्ड इज दैट वेयर इज इट गोइंग टू हैपन, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क यू. इफ यू टेल मी वेयर इज इट गोइंग टू हैपन, देन ऑफ कोर्स योर नेम गोज टू द लकी डिप, एंड मे बी एकदम आखिरी मोमेंट पे पूछो. आप वेट कर रहे थे ना कि आखिरी तक रोक के रखते हैं, क्या पता बस आज ही वो मोमेंट है, मुझे बता दीजिए. एंड यू स्टैंड मे बी स्टैंड अ चांस टू विन सुहानी शाह के शो के लिए टिकट जो है आप बिल्कुल जीत सकते हैं. वेयर इज इट हैपनिंग? यस, दैट्स व्हाट यू वर टेल मी 9589863 पर.

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: सिंगापुर, क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th टू 18th सितंबर, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज़ ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज
1: एक मिनट, क्या कहा तुमने? ब्रांडेड बैग्स दिए जा रहे हैं? वन सेकेंड, ओके. आई थिंक I need to text Renuka and I want everybody's bosses, अगर आप tuned in हो, I think you should also do something like this. भाई, employee की जिंदगी में motivation तो होना ही चाहिए ना, है ना? क्या कहते हो आप? Radio मस्ती 24/7 live पर अंतर आपके साथ यहाँ पे चल रहा है, of course, midweek blues. मेरे तो सारे blues भाग गए ये सुन के कि ये ऐसा कहाँ चल रहा है. तो फिर पता चला खोजबीन पे कि साउथ कोरिया में ऐसा चल रहा है. तो apparently there is this one company in South Korea who are giving like the branded, and I'm not talking about any brand, I'm talking about Gucci, Prada, Chanel brand. Okay, is brand ke bags diye ja rahe hain, not for hitting targets. एक तो ये होता है कि भाई तुमने टारगेट कंप्लीट किया तो तुमको कंपनी की तरफ से वाह वाह और ये भी लो, ये बैग लेके जाओ. ना, दे आर गिविंग देम बैग्स फॉर गोइंग टू जिम. आई एम नॉट किडिंग. सो बेसिकली ये एक इंडियन है जो कि साउथ कोरिया में रहती हैं, और उन्होंने शेयर किया कि उनकी कंपनी में द रूल इज सिंपल, वर्कआउट करो 2 महीने के लिए कंसिस्टेंटली. ओके, सेंड अ प्रूफ टू योर मैनेजर, फोटोज, वीडियोज, व्हाटएवर शोज दैट यू एक्चुअली डिड इट विद द डेट स्टैम्प एंड ऑल, एंड स्टिक विद इट. द कंपनी बेसिकली रिवॉर्ड यू विद अ लग्जरी गिफ्ट एट द एंड. 2 महीने करना है, 2 महीने. ओके, कोई सेल्स कोटा अटैच नहीं, कोई ईयर एंड का रिव्यू टाइड अप नहीं, जस्ट शो अप for yourself consistently and the company notices. Bhai sahab, mera to matlab dimag jo blow hua hai. Yes, it is mind the blowing. I think it's a fantastic, see, keeping everything aside, it's a fantastic thing. Okay, kisi ko active rakhne ke liye, motivate karne ke liye, and especially for girls, I think bahut hi shandar idea hai ye. Anybody would do it, I would do it. Like वैसे मुझे बैग नहीं मिल रहा है, मैं उसके अलावा भी, लेट मी टेल यू, आई हैव बीन डूइंग इट, इट हैज बीन मोर देन 2 मंथ्स नाउ. बट ये आइडिया बहुत अच्छा है यार, है ना? तो मैं सोच रही थी कि मैं एक टेक्स्ट तो ड्रॉप, मैं टेक्स्ट भी ड्रॉप नहीं करती, ये जो न्यूज है वो मैं ड्रॉप कर देती हूँ उनको कि देख लो कैसे चल रहा है. ऐसी HR पॉलिसीज आनी चाहिए, हमें उसमें भी इवॉल्व करना चाहिए. हाउ टू पुट योर मन की मंशा सटल वे में, that's the art I am trying to learn nowadays. otherwise so bahut sari art main aajkal seekhne ki koshish kar rahi hu. Another art I want to learn is that if I am not happy with somebody's email and I want to tell that person ki tum kya hi soch ke tumne kya khaya tha jo tumne ye email likh kar mujhe bheja hai, ab main tumhe kaun si language mein samjhau. Now I usually have to write this in a very decent manner back. Oh, it is like this, and I take help of AI. I will not, मतलब मेरे को कोई शर्म नहीं है कि इसको write this politely so that person doesn't get offended. I know. Good evening.

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 PM onwards, CSE Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now 8138-2790. Ishq Sufiana, mera. Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
1: It's a Masti Partner event.
0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 AM to 6 PM, Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together. Take a break, laugh a little and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
2: मतलब मैं क्या बोलूँ, क्या ही बोलूँ मैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा आपके साथ, यहाँ पर जो है मिडवीक ब्लूज चल रहा था। एक यहाँ पे मतलब एक तो हमारे लिसनर्स इतने ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं कि अब तो कुछ क्या ही बोलूँ मैं उनको। एक लिसनर मुझसे यहाँ पे कह रही है कि बाय अंतरा। मैंने कहा पहले अंतरा को जाने तो दो। और ये वही मतलब मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बट ये लिसनर हमेशा मुझे वक्त से पहले ही घर भेज देती है, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। लाइक काश ऐसा ही होता। Well, I am glad. But yeah, bye already उनकी तरफ से आ चुका है। You have a great evening ahead. मैंने उससे कहा बहन जाने तो दे पहले, उसके बाद तो मेरा bye भी लेती हुई जाना साथ साथ में। But वो एक हमारे listener है। दूसरे हमारे listener कह रही है मस्ती का birthday का plan क्या है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, and for all those people who are writing us, मस्ती का birthday I know आ रहा है, plan क्या है इस बार जो है। मैं पूछ रही हूँ प्लान क्या है बताओ। इतने सालों से हम लोग इतनी मेहनत शिद्दत सब कुछ करते हुए आ रहे हैं और इस बार आपकी बारी है, आप बताओ क्या, कहाँ है पार्टी, कहाँ आए हम, है ना। इस बार उल्टा होना चाहिए, द टेबल शुड टर्न। जब पिछली बार इन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने उनको यही जवाब दिया था और मुझे ये याद है। और जितनी बार वो मुझसे ये सवाल पूछेंगे मैं उतनी बार उनसे यही पूछने वाली हूँ, आप बताओ हम तो पहुंच जाएंगे, आना कहाँ है, है ना। वेल, इसी बात के साथ बहुत सारी बातें जो है ऐसी याद रखनी पड़ती है। मैं तो भाई कृष्णवल के नट्स खा लेती हूँ, मेरा उसी से काम चल जाता है, सेहत भी बनी रहती है, दिमाग भी काफी चलता है। और इनका मिड ऑटम फेयर भी चल रहा है 11 तारीख से 25 तारीख तक, वेलोसिटी नोवीना स्क्वायर में, इन फ्रंट ऑफ KSC कियोस्क नंबर 12। भाई कमाल के इनके रेंज है, वैरायटी है, यू हैव हर्ड फ्रॉम अस सो मेनी टाइम्स। ऑनलाइन अगर अभी तक ऑर्डर नहीं किया है, आप वहां जाकर फिजिकली जो है बाय करके परचेज करके एक बार टेस्ट कर लो। मैं कह रही हूँ वापस से जाओगे जीजी मार्ट ऑनलाइन पर जाकर कृष्णवल के नट्स जो है वो आप वापस से ऑर्डर करोगे। अब इसी बात के साथ मुझे दो इजाजत, अब कल होगी मुलाकात विद मस्ती 90s मिक्सटेप 11 बजे, उस पहले नूपुर के शो पे, वो भी बिल्कुल आना जरूरी है। पूरा दिन रहो हमारे साथ क्योंकि हमने डिजाइन ही ऐसा किया है, हम साथ में रहते हैं तो आपने भी तो रहना चाहिए ना। द रिलेशनशिप शुड बी दोनों साइड से, तभी सक्सेसफुल होता है ना। चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आज के लिए इतना ज्ञान काफी है, गुड नाइट।

एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था। गुड़ की खुशबू सुन के भिन भिन करती एक छतरी सर पे मंडलाती थी। धूप चढ़ी और सूरज की गर्मी पहुंची तो गुड़ की भेली बहने लगी। मासूम देहाती हैरान था, माथे से मीठे मीठे कतरे गिरते थे और वो जीभ से चाट रहा था। मैंने देहाती मेरे सर पे ये टैगोर की कविता भेली किसने

सामने चूल्हा जल रहा है, धुआं आंखों में लग रहा है, जलन भी है आनंद भी। बस आते ही होंगे, जल्दी से संध्या पूजा हो जाए। जानती है वो क्या कहेंगे।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: लाइट्स, रोल साउंड, कैमरा, एक्शन एंड बी रेडी फॉर अ ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग शो जिसका नाम है लेजेंड्स, जहां पर मैं हिंदी फिल्म जगत से आपको मिलवाता हूं। उनके साथ हम कुछ लम्हे जी लेते हैं, उनके कुछ अनसुने किस्से आपसे शेयर कर लेते हैं। मैं हूं आपके साथ, नाम नहीं बताया मैंने अभी तक, उम्मीद कर रहा था कि आप मुझे पहचान जाएंगे। प्यार से आप मुझे कहते हैं समर, और गुस्से में भी समर ही कहते हैं आप मुझे। नमस्कार, आदाब, जज़रियाकाल, वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम। आप सुन रहे हैं सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो नाउ द गो, और शो है लेजेंड्स, जहां बातें पूरी फिल्मी, अंदाज शायराना, डायलॉग एकदम सिनेमा वाले, और गाने एक से बढ़कर एक। तो बातों का सिलसिला शुरू करें। वैसे फिल्म्स के एक्टर्स, सिंगर्स और डायरेक्टर्स सभी को पसंद होते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली फिल्म में एक चीज और बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उनका होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिल्म के इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होते हैं। इन शॉर्ट, फिल्म में तड़का नहीं लगता। नहीं, मैं डांस नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ या आइटम गर्ल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ विलन्स की, खलनायकों की। नायक नहीं, खलनायक भी पसंद है मुझे। और हमारी हिंदी फिल्म्स में तो कितने अलग अलग तरह के, कितनी वैरायटीज के विलेन हुए हैं, कितने आदमी थे, से लेकर मोगैम्बो, खुश हुआ, मतलब हर तरह के विलेन्स हैं, और इतने खतरनाक कि कभी कभी तो सपनों में भी डर लगता है उनसे। क्या एक्टिंग करते हैं, जब उन्हें पर्दे पर एक्टिंग करते देखते ना तो दांत भिज जाते हैं ऐसे, और मुठ्ठियां भींच लेते हैं, मिल जाए ना कभी रास्ते में तो मार मार के दुम्मा बना दे। लेकिन लेकिन लेकिन जब दिमाग काम करता है तो वो बताता है कि भाई वो तो आर्टिस्ट हैं, सिर्फ आर्टिस्ट जो अपना काम कर रहे हैं, इतनी शिद्दत और काबिलियत से अपने फन को पेश कर रहे हैं कि वो कैरेक्टर की जान बन जाते हैं और हम उन्हें उसी रूप में देखने लगते हैं। अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, शशिकला, प्रेम चोपड़ा, प्राण, हुई माँ, कितने सारे। वैसे विलेन बनना आसान नहीं है, मतलब हीरो हीरोइन फिल्म में हैं, उनकी मौजूदगी में अपनी पहचान बनवा पाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन ये काम हिंदी फिल्म्स के विलेन्स ने बहुत खूबसूरती से किया है। तो चलिए इस सीरीज में इस बार आपकी मुलाकात एक विलेन से कराते हैं, या वैम्प जी आज हमारे साथ हैं। अरे वही जो कभी खड़ूस सांस, तो कभी खतरनाक ननद, तो कभी चालाक बीवी, तो कभी एजेंट, कभी पड़ोसी, तो कभी न जाने क्या क्या, वो है अपनी अरुणा ईरानी। जी हाँ, आज हम उन्हीं की करने वाले हैं बात। हर रोल को उन्होंने इस तरह से निभाया कि उसमें जान ही डाल दी। तो चलिए सबसे पहले इस अदाकारा की कुछ गाने सुन लेते हैं, और उसके बाद ये बातों का सिलसिला जारी रखेगा आपका अपना समर। आप सुनते रहिए लेजेंड्स ओनली ऑन सिंगापुर नंबर वन एंड ओनली हिंदी रेडियो स्टेशन, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। स्टे कनेक्टेड।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan baithak? जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec, Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
2: It's a Masti Partner event.
3: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
4: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Shaam ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
3: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
4: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
5: GG.
4: Krishival nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
5: GG Mart, your personal grocer.
6: Sunte rahiye Legends phir se Samar ke saath.
7: Aaj ke baad wo jaagega to maa kahega, soega to maa kahega, jiyega to maa kahega aur marega tab bhi maa kahega.
8: बेटा फिल्म का ये डायलॉग जहां अरुणा ईरानी ने अनिल कपूर की सौतेली माँ का रोल निभाया था।
9: वेलकम बैक, मैं एक बार फिर से आ गया हूँ लेकर लेजेंड्स सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्मों की मशहूर फीमेल विलन कैरेक्टर एक्टर अरुणा ईरानी की। आंखों में नफरत और चालबाजी, सामने शनाफत का नकाब और दिल में साजिशें, उन्होंने सौतेली माँ का किरदार कुछ इस खूबसूरती से निभाया था इस फिल्म में बेटा में, कि सोसाइटी में उस वक्त सबसे ज्यादा बदनाम सौतेली माँ हो गई थी। हालांकि इससे पहले भी फीमेल विलेंस आती रही हैं हिंदी फिल्मों में, लेकिन इनमें और इजाफा और रंग भर दिया बेहद हसीन सूरत वाली अरुणा ईरानी ने। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं इस कहानी की भी। जैसे सबकी जिंदगी की कहानी की शुरुआत होती है उसके जन्म से, तो अरुणा ईरानी 18 अगस्त 1946 को मुंबई में पैदा हुई। और जैसे तमाम बच्चे मासूम हुआ करते हैं, वो भी बहुत ही मासूम और बड़ी ही प्यारी नटखट सी बच्ची थी। इनके पिता एक ड्रामा कंपनी के मालिक थे, फरीदून ईरानी, और इसी कंपनी में इनकी मम्मी भी काम करती थी, जहां दोनों मिले और दोनों ने शादी कर ली और अरुणा का जन्म हुआ। अरुणा अपनी फैमिली में सबसे बड़ी हैं। इनके बाद इस कपल के 7 बच्चे और भी हुए। अब फरीदून की कंपनी बहुत ही छोटी सी थी, नाटक कंपनी, ड्रामा कंपनी, तो इतने बड़े परिवार का खर्चा उठाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। परिवार की माली हालत खराब हो गई, 8 भाई बहन और गरीबी। यूं तो मुंबई में लोगों के ख्वाबों को परवाज मिलती है, लेकिन वहीं पर एक परिवार फिल्मों से, नाटक से जुड़ा हुआ परिवार मुफलिसी की जिंदगी जी रहा था। हिंदी और मराठी भाषा बोलने वाली अरुणा ईरानी अपने तीखे नैन नक्श से सबको बहुत पसंद आ जाती थी और बचपन से ही उन पर नाटकों का जादू भी चढ़ गया था। अभी बच्ची ही सी तो थी, 6th क्लास में पढ़ रही थी वो। इसी दौर में स्कूल की फीस नहीं भर पाने के कारण उनकी पढ़ाई छूट गई। अरुणा बहुत उदास हुई, लेकिन परिवार के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि उन्हें और पढ़ाया जा सके। और इसके ऊपर से एक और दर्द जो उन्हें सालता रहता था वो ये कि अक्सर पिताजी कहा करते थे कि अगर इस बेटी की जगह बड़ा बेटा होता तो शायद वो जिम्मेदारी संभालता, ज्यादा बेहतर होता कि मुझे एक बेटा हुआ होता जो परिवार को देखता। अब ये लड़की है, ये क्या करेगी? अब क्या हुआ, होना क्या था? वही हुआ जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। हुनर हो तो गुदड़ी में भी हीरे पैदा होते हैं। आकर बताऊंगा कांच के हीरे में तराशने की कहानी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक एंजॉय कीजिए और वापस आइए और सुनते रहिए सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। समर है आपके साथ।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
2: अच्छा तो टकलू महाराज ने लंबे बाल लगा लिए, नाम बदल लिया।
3: अरे तू कितने भी हुलिये बदल बुढ़ाऊ, मैं तुझे हर हुलिये में पहचान के रहूंगी।
2: हाँ जी, अपनी एक फिल्म में अरुणा जी जब ये डायलॉग बोलती हैं, तो सुनने वाले ठाके ही मारते हैं। गोल गोल आंखों को चलाकर जब वो ये डायलॉग बोलती हैं, तो बड़ा प्यारा सा चेहरा लगता है उनका। समर के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं लेजेंड्स का ये प्यारा सा सफर, जहां पर आपको मैं सिंगापुर में मुंबई के दर्शन करा रहा हूं, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के। आज हम बात कर रहे हैं अरुणा ईरानी जी की। अरुणा जी के बचपन से जुड़ा एक बहुत ही मजेदार किस्सा है, चलिए वो आपसे शेयर करता हूँ। हुआ यूं कि जब अरुणा जी 10 साल की थी और स्कूल जाती थी, तो वहां एक लड़का भी साथ में पढ़ता था। बचपन की दोस्ती थी ये, साथ साथ पढ़ते, साथ साथ खेलते, और जब पिकनिक पर जाते तो वो अरुणा के लिए खुद के घर से खाना बनाकर लाता और चीजें भी खिलाता। लड़के का रंग बड़ा ही गोरा सा था और आंखें ब्राउन कलर की। एक दिन उसने वो शहर छोड़ दिया। कई सालों के बाद जब विनोद खन्ना साहब के साथ अरुणा जी काम कर रही थी, तो एक डांसिंग सीन से पहले विनोद जी ने अरुणा से कहा कि मेरे भाई इस सीन पर आपसे चर्चा करेंगे। अब बात तो हुई कम और वो अरुणा जी को बस टुकुर टुकुर टुकुर टुकुर देखते ही जाए। हालांकि अरुणा जी को ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। फिर बहुत देर के बाद प्रमोद, विनोद जी के भाई, उनसे सब्र नहीं हुआ और वो खुलकर हंस पड़े। पता है क्यों? क्योंकि ये वही भूरी आंखों वाला लड़का था जो बचपन में अरुणा जी का दोस्त हुआ करता था। हाँ, वो विनोद खन्ना के बड़े भाई साहब थे जो बचपन में अरुणा जी के आगे पीछे घूमते रहते थे। तो ऐसे मिले दो बचपन के दोस्त। अरे अभी तो आपको ये भी नहीं बताया मैंने कि अरुणा जी फिल्म्स में कैसे आईं, ये एंट्री उनकी कैसे हुई, और उनका पहला क्रश भी तो आपको बताना है। तो चलिए एक और म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं और इस स्टोरी को जारी रखते हैं सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो ऑन द गो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। स्टे कनेक्टेड।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: चलो तो ऐसे कि पवन भी थम कर देखने लगे और झूम उठे कायनात जब तुम थिरकने लगो। हाँ, ऐसी ही तो है हमारी आज की लेजेंड, जिनकी हंसी, जिनकी आवाज, जिनका अंदाज और जिनकी अदाकारी ऐसी ही दिलचस्प और खूबसूरत है। वेलकम बैक, मैं हूँ समर आपके साथ। सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर शो चल रहा है लेजेंड्स, और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा की जिन्होंने हिंदी फिल्म की विलनेस में अपना एक अलग मुकाम बनाया। इन्हें जो भी देखता ही रह जाता, लेकिन इन्होंने किसे देखा कि ये खुद फिदा हो गई। तो जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र किया था कि मैं आपको बताऊंगा अरुणा जी के पहले क्रश का, कैसे उन्हें देखते ही वो अपना दिल दे बैठी। और कौन थे वो, मुझे मालूम है इसमें आप भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। वो थे शशि कपूर साहब। हुआ यूं कि बचपन में अरुणा जी ने शशि जी की एक फिल्म देखी थी जिसमें वो अपनी कोस्टार इंद्राणी मुखर्जी की मांग में सिंदूर भरते हैं। अब बस बेबी अरुणा को शशि बेहद अच्छे लगने लगे, दिल को भा गए। अब वक्त गुजरा तो उसके बाद ये खुद भी फिल्मों से जुड़ गई, और जब उन्हें शशि जी के साथ काम करने का मौका मिला तो हर सीन में शशि जी वन टेक ओके सीन दे देते थे, रोमांटिक सीन हो या कोई भी आम सा सीन। तब अरुणा जी ने शशि जी से कहा था, अरे हम हब पर जान देते हैं और आप हैं कि एक टेक में ही काम कर देते हैं, और दूसरी हीरोइन के साथ तो आप कितना रीटेक करते हैं, अब मैं भी रीटेक करूंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको देख सकूं। तो ये था बड़ा ही जबरदस्त वाला क्रश अरुणा जी का। अरे हाँ, आपको मैं फिल्मों में उनके पहले ब्रेक की बात भी तो बताने वाला था। तो फिल्मों में पहली बार उनका ऑडिशन हुआ फिल्म गंगा जमुना के लिए। 500 से भी ज्यादा बच्चों के ऑडिशन हुए थे इस फिल्म के लिए, और चुना गया अरुणा ईरानी को। जब ये ऑडिशन के लिए गई उससे पहले इन्हें दिलीप साहब देख रहे थे, बहुत ही इतराती थी, बड़ी शरारतें कर रही थी, ऊपर बालकनी में खड़े खड़े दिलीप कुमार साहब इन्हें देख रहे थे तो वहीं से चिल्लाए, ए लड़की एक्टिंग आती है क्या, कर पाएगी? अरुणा बोल तो थी, बोली हाँ कर लूंगी। कैमरे के सामने गई, ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई और बेबी अजरा के तौर पर उन्हें इस फिल्म में ले लिया गया। तो इस तरह से उनकी पहली फिल्म हुई गंगा जमुना। अब आगे क्या हुआ ये आप भी जानना चाहते हैं और मैं भी बताने के लिए बेताब हूँ, लेकिन ये खूबसूरत नगमे आपका इंतजार कर रहे हैं, इन्हें ऐसे रुसवा तो नहीं कर सकते ना। तो चलिए इन्हें सुन लेते हैं, गुनगुना लेते हैं और इस कहानी को जारी रखेंगे सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आप हैं समर के साथ।

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
8: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
9: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ.
10: लीजिए एक बार फिर से हाजिर है समर. वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, जहां पर लेजेंड्स चल रहा है. और मैं आपको आज मिलवा रहा हूं हिंदी फिल्मों की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ अदाकारा अरुणा ईरानी से. कहते हैं हालात इंसान से वो सब करवाते हैं जिसका उसने कभी इरादा भी नहीं किया होता. अरुणा जी की जिंदगी भी कुछ यूं ही हर रोज नए नए संघर्षों की कहानी बन रही थी. फिल्म्स में काम मिलना और खुद को बनाए रखना और साथ ही अपनी आरजुओं को भी जिंदा रखना शायद आसान नहीं होता. अरुणा जी को अभी काम मिलना शुरू ही हुआ था, वो सी ग्रेड फिल्म्स में छोटे मोटे रोल करने लगी. अरुणा ईरानी अपने स्ट्रगल के दौर के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि उस वक्त कन्वेंस के 150 रुपए भी मिलते थे. अब ये सफर तो करती थी लोकल ट्रेन से, लेकिन वो पैसे जो गाड़ी के नाम पर मिलते थे, कन्वेंस के नाम पर मिलते थे, वो लेती जरूर थी और उन पैसों को बचाकर अपने भाई बहनों के लिए घर फ्रूट्स ले जाया करती थी. ओ माय गॉड, कितनी समझदार थी आप इतनी सी उम्र में भी. इतनी अच्छी लड़की को अच्छे रोल मिलने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से मिलते ही नहीं थे. और कई बार तो इतने खराब और फूहड़ रोल मिलते थे कि ये तंग आ जाती थी, कभी अपनी उम्र से दुगना. तो ऐसे में ये बहुत डिप्रेस हो गई, थक गई और उस काम से, उस दुनिया से भागने लगी. लेकिन जब घर आती तो अपने छोटे भाई बहनों के मासूम चेहरों पर अपने से एक उम्मीद पाती और फिर मजबूत होकर खुद को संभालती और फिर काम पर निकल जाती. अभी तक अरुणा जी ने गंगा जमुना, अनपढ़ में माला सिन्हा के बचपन का रोल, फिल्म जहां आरा, फर्ज, उपकार और आया सावन झूम के फिल्म में काम कर लिया था. लेकिन कामयाबी और शोहरत अभी बहुत दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रही थी. ऐसे में एक दिन जैसे आसमान से तारा टूटते हुए उन्होंने कोई दुआ मांग ली थी और वो पूरी हो गई. उनकी जिंदगी में एक ऐसा फरिश्ता आया जिसके साथ ने अरुणा के फिल्मी सफर को आसान बना दिया. कौन था ये बताऊंगा, जरा सा इंतजार कीजिए. ये गाने भी तो आने की जिद कर रहे हैं, पहले इन्हें सुन लेते हैं फिर कहानी को जारी रखेंगे यहीं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. तो सिंगापुर सुनते रहिए समर के साथ लेजेंड्स.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, ऐसे तो और हंसी लगते हो जी। हाँ जी, अभी दौर शुरुआती था, चाइल्ड आर्टिस्ट से धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते अरुणा जी फिल्मों का हुनर सीख रही थी। तो एक बार फिर से इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद मैं आ गया हूँ समर लेकर इसी अदाकारा यानी अरुणा ईरानी का फिल्मी सफर। आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, सिंगापुर नंबर वन एंड ओनली हिंदी रेडियो, नाउ द गो। हाँ, तो इस ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रहा था कि एक फरिश्ता अरुणा जी की जिंदगी में एंट्री लेता है और अरुणा के दुखों को दूर करने में बहुत मदद करता है। जानते हैं कौन थे? ये थे महमूद, जो हिंदी फिल्मों के मशहूर और मारूफ कॉमेडियन थे। इनकी मुलाकात हुई अरुणा से। महमूद, जो बड़े ही पारखी किस्म के इंसान थे, अरुणा के टैलेंट को पहचान गए और एक सच्चे दोस्त की तरह वो अरुणा का साथ देने लगे। अरुणा की मेहनत, साफ नीयत और लगन ने भी उन्हें खासा मुतासर किया और वो दोनों साथ साथ 20 से 22 फिल्मों में नजर आए। और महमूद साहब ने जब बॉम्बे टू गोवा फिल्म बनाई तो अरुणा को अमिताभ के साथ पेश किया। कैन यू बिलीव दिस, अमिताभ बच्चन की हीरोइन। अरुणा उस फिल्म का जिक्र करते हुए कहती हैं कि अमिताभ बच्चन साहब को डांस करने में बड़ी परेशानी होती थी और उन्हें ये देखकर खुद का शुरुआती टाइम याद आ जाता था। लेकिन जब दो लोग साथ साथ रहते हैं तो कुछ तो लोग कहेंगे, और फिल्म इंडस्ट्री में तो ये बहुत ही कॉमन ट्रेंड है। कुछ वक्त बाद इंडस्ट्री में महमूद और अरुणा की शादी की खबर फैल गई, जिसे इन लोगों ने नकारा भी, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि अब दोनों ने साथ साथ काम करना बंद कर दिया। हालांकि तब तक अरुणा एस्टेब्लिश हो चुकी थी। अरुणा जी ने फिल्म्स में कई तरह के किरदार निभाए और उस वक्त यूं आइटम नंबर्स हुआ नहीं करते थे, लेकिन अरुणा जी के सारे डांस नंबर्स बेहद हिट होते थे। कुछ गानों को तो उन्होंने अपने डांस के साथ अमर कर दिया, जैसे कारवां का गाना दिल भर दिल से प्यारे, ज्योति फिल्म का थोड़ा रेशम लगता है, या मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी। मतलब उन्हें अब फिल्मों में कॉमेडी, फनी, सीरियस, डांसिंग, जॉयफुल, स्वीट, सिंपल और नेगेटिव रोल भी मिलने लगे, और ये नेगेटिव रोल उनके करियर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुए। इतने कि अरुणा की शोहरत सातवें आसमान पर पहुंच गई और अब शायद उनके पिताजी को भी उनसे वो शिकायत नहीं रही, क्योंकि अरुणा जी ने लड़की होते हुए भी लड़कों से बढ़कर जिम्मेदारी संभाली और अपने दूसरे भाई बहनों के लिए भी फिल्म में जगह बनाई, जैसे आदि ईरानी को आप जानते होंगे। बहुत सारी फिल्में मैं आपको याद नहीं करा पाऊंगा, लेकिन अगर आपने बेटा फिल्म देखी है तो उस फिल्म में अनिल कपूर के सौतेले भाई का रोल जिन्होंने किया था ना, वो आदि ईरानी है। तो अरुणा जी का नेगेटिव किरदार अब लोगों को बहाने लगा था। बहुत ही सीधी साधी से नजर आने वाली ये चंचल शो हसीना अब नेगेटिव रोल्स में नजर आने लगी। फिर क्या हुआ, बताऊंगा, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक दो बनता है ना, तो लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं बस यूं गया और यूं आया सिंगापुर, इंतजार कीजिएगा मेरा, मैं हूं समर आपके साथ।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 सितंबर 7 p.m. onwards, CSE ऑडिटोरियम टू सैनसन रोड. टिकट $60 onwards. कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0. इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया.
2: It's a Masti Partner event.
3: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से.
4: दिल पर दिल से प्यारे,
5: दिल की सुनता जा रे, सारी दुनिया हारी हमसे, हम तुझ पे दिल हारे. समर की जुबानी लेजेंड्स की कहानी आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. वेलकम बैक. आज मैं बात कर रहा हूँ अरुणा ईरानी जी की. अरुणा जी को 16 साल की उम्र में गुजराती फिल्म्स में पहली बार लीड रोल मिल गया था और उसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया. और हिंदी फिल्मों की बात करें तो अरुणा ईरानी ने करीब 200 फिल्म्स में काम किया, जहां बहुत से अलग अलग कलाकारों के साथ उन्होंने बड़े ही दोस्ताना माहौल में ऐसी यादगार फिल्म्स की कि जिनका मुकाबला नहीं. बॉबी, लव स्टोरी, आसपास, सरगम, लैला मजनू, कुर्बानी, फकीरा, कुदरत, कारवां, शहंशाह, रॉकी, राजा बाबू, बेटा, दिल तो पागल है, ये सब काबिले जिक्र है. तो कहने का मतलब ये है कि अरुणा जी ने लगभग सभी अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के साथ काम किया, जिनमें दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना, मनोज कुमार, शशि कपूर, अनिल कपूर, ऋषि कपूर, अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान और अभी जो नए लोग आ रहे हैं वो भी उनके साथ काम कर रहे हैं. और उनका ये फिल्मी करियर यूं ही बना रहे, हमारी यही दुआ है. और जो नए लोग अभी उनके साथ काम कर रहे हैं वो उनकी कला के हर रंग को पहचान रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं. यूं अरुणा जी ने बहुत सारे कैरेक्टर रोल्स भी किए, बहुत अलग अलग तरह के रोल किए, लेकिन नेगेटिव रोल जिन भी फिल्म्स में उन्होंने प्ले किया ना वो मील का पत्थर साबित हुए. लेकिन फिर भी बेटा की जो माँ थी वो सब पर भारी पड़ी. अच्छा, फिल्म्स की तरह ही टेलीविजन सीरियल्स में भी उन्होंने जबरदस्त कैरेक्टर रोल्स किए जिनके लिए उन्हें बहुत वाहवाही मिली. तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक और ले लेता हूँ और उनके 3 सुपर डुपर हिट गानों के साथ लौटूंगा मैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद. रहिए समर के साथ और सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो. नाउ ऑन द गो.

0: Hours of Magic. Wow! One Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhanisha, an incredible evening of mind reading, mentalism, and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre. Hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious. Leave Spellbound with Suhanisha.
1: How do you know these things? Stop reading my mind.
2: क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026।
3: आया देखो आया बप्पा मोरिया।
2: हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th to 18th September, Open Field beside Holiday Inn, 2 Owen Road, Farrer Park. Maharashtra Mandal Singapore ka Ganesh Utsav 2026.

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: गाने सुनाने और बातें बताने समर आ गया है, लेजेंड्स वाला समर, जिसकी बातों में कभी गीत गाए जाते हैं, कभी फिल्मों की कहानियां जीते हैं आप। वेलकम बैक। सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो आप सुन रहे हैं, रेडियो मर्जी 24/7 लाइव। और सिंगापुर आज मैं बात कर रहा हूँ अरुणा ईरानी की, जो इसी तरह से कभी शक्कर जैसी मीठी तो कभी मिर्ची जैसी तीखी लगती रहीं, अपने अभिनय से सबको लुभाती रहीं। तो अब बारी है उनके 3 बेस्ट सॉन्ग्स की। वैसे बहुत ही मुश्किल काम, लेकिन मेरा पसंदीदा काम भी यही है। अरुणा जी के जो नेगेटिव रोल्स थे वो तो बहुत ही मशहूर हुए, साथ में उनके जो डांसिंग नंबर्स थे वो जबरदस्त हिट हुए। और कई गाने तो ऐसे हैं जिनके रीमिक्सेस बने, लेकिन वो गाने अपनी ताजगी और अपनी महक और अपनी एनर्जी और रिफ्रेशनेस को कभी खो ही नहीं पाए। नासिर हुसैन की कारवा 1971 में पर्दे पर आई एक जबरदस्त थ्रिलर थी और उस साल की जबरदस्त हिट भी थी। अरुणा ईरानी जी का इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार था और लाजवाब डांसिंग नंबर्स थे जो आज भी पसंद किए जाते हैं, आज भी याद किए जाते हैं। और इसका एक गाना तो मुझे बेहद पसंद है, दिल भर दिल से प्यारे, दिल की सुनता जा रे। तो ये मेरी लिस्ट में आज का पहला गाना है। और दूसरा गाना है दिल थाम कर बैठिए, लव स्टोरी फिल्म का ये गाना है खास आपके लिए, क्या गजब करते हो जी। जी हाँ, जिसमें अरुणा जी नजर आई कुमार गौरव साहब के साथ, विजेता पंडित और कुमार गौरव की ये पहली फिल्म थी। और तीसरा गाना नन्ना मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कोई कांटा चुभ जाएगा। अनोखी रात फिल्म का ये अनोखा और बेहतरीन परफॉर्म्ड डांस नंबर, अरुणा ईरानी जी का तीसरा बेस्ट सुपरहिट नंबर मेरे इस लिस्ट में। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे ये 3 बेस्ट सॉन्ग्स आपको भी जरूर पसंद आएंगे। तो चलिए सिंगापुर मिलकर सुनते हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर ये बेहतरीन नगमे। आप हैं समर के साथ, सुन रहे हैं लेजेंड्स, बने रहिए। और भी बहुत सारी बातें करनी मुझे आपसे।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड. टिकट $60 ऑनवर्ड्स. कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0. इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया.
2: It's a must-be partner event.

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं हूं समर आपके साथ और शो है लेजेंड्स। एक बार फिर से लौट आया हूं। बात कर रहा हूं आज मैं अरुणा ईरानी जी की और सिंगापुर ये बात आपसे पूछ रहा हूं मैं, कौन कौन है जो अपने हाथ साबुन से धोता है और कौन कौन है जो प्याज काटते हुए रोता है, कौन कौन है जो बिना पिलो के सोता है और कौन कौन है जो फ्रिज की बची आइसक्रीम मुझे देता है। आप कहेंगे यार क्या बात है, समर को भूख लग रही है क्या, आज ऐसी हरकतें कर रहा है अनुज जैसी। नहीं नहीं, लेकिन जब मुझे भूख लगती है ना तो मैं ऐसी हरकतें करने लगता हूँ, ऐसी बातें बोलने लग जाता हूँ, फिलहाल अजीब अजीब से जोक क्रैक करता हूँ। लेकिन अभी वाली जो भूख है वो जरा अलग हटके है, अलहदा है। अभी लगी है मुझे अरुणा जी की फिल्म्स को मिले अवार्ड्स की भूख। हाँ, भूखी तो होती है, जिसकी वजह से हम और मेहनत करते हैं पूरी शिद्दत से किसी चीज को हासिल करने के लिए। हमें भूख ही तो उकसाती है, वरना लोग आते हैं चले जाते हैं कोई उन्हें पूछता भी नहीं। बाकी रहने के लिए अपनी शिनाख्त बनानी पड़ती है और जब शिनाख्त बनती है तो लोग इज्जत से नवाजते हैं। एक्चुअली अरुणा जी ने हिंदी, मराठी, गुजराती और कन्नड़ फिल्म्स में, बहुत सारी फिल्म्स में काम किया और हर तरह के, ऑलमोस्ट हर तरह के रोल्स प्ले किए। फिर वो प्रोडक्शन में उतरी, डायरेक्शन में उतरी, उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा और बहुत सारे उम्दा सीरियल्स बनाए जिन्हें लोगों ने बहुत पसंद किया। और एक सीरियल मैं भी बहुत देखा करता था, जिस देश में निकला होगा चांद, ये अरुणा ईरानी प्रोडक्शंस का ही शाहकार था। तो चलिए फिल्हाल मैं उनके अवार्ड्स की बात कर रहा हूँ। तो दो फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अरुणा ईरानी जी ने जीते, जिनमें से पहला 1985 में आई फिल्म पेट प्यार और पाप के लिए, जिसमें उन्होंने जानकी देवी का किरदार निभाया था, और दूसरा ऑफ कोर्स बेटा के लिए 1993 में ये फिल्म आई थी, लक्ष्मी देवी कड़क सास वो बनी थी, इंद्र कुमार की ये फिल्म थी, जबरदस्त हिट। लेकिन इसी अवार्ड के लिए, यानी फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए उन्हें नॉमिनेशन कई बार मिला। 1972 में आई फिल्म कारवा के लिए, 1974 में आई फिल्म बॉबी के लिए, 76 की दो झूठ के लिए, 78 की खून पसीना के लिए और 82 की रॉकी, 95 की सुहाग, 96 की कर्तव्य और 1998 की गुलाम मुस्तफा के लिए उन्हें नॉमिनेशन तो मिला, लेकिन अवार्ड वही दो मिले जो मैंने आपको बताए। लेकिन लेकिन लेकिन एक और अवार्ड उन्हें मिला, जो मिलता है तब जब आप अपनी पूरी जिंदगी सिनेमा को समर्पित कर देते हैं, यानी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो 2012 में उन्हें दिया गया। और इसके अलावा गुजराती फिल्म्स और मराठी फिल्म्स के लिए भी उनको कई अवार्ड्स से नवाजा गया। अच्छा, अरुणा ईरानी के बारे में एक और फैक्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब के साथ उन्होंने 19 फिल्मों में काम किया, बतौर उनकी हीरोइन भी काम किया, बॉम्बे टू गोवा आपको याद होगी, और इसके अलावा और भी कई छोटी छोटी भूमिकाएं उन्होंने अलग अलग फिल्मों में की। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि वो अपने से छोटी उम्र के हीरोज के साथ भी काम करती थी और अपने से दुगनी उम्र के हीरोज के साथ भी काम करती थी। आपको याद होगा फिल्म लव स्टोरी में कुमार गौरव को सीड्यूस करती है गाने में, वो क्या गजब करते हो जी, उम्र में कुमार गौरव से कई साल बड़ी लेकिन लगती नहीं है। अपने आप को किरदार में वो इस तरह से ढाल लेती थी कि उम्र न जाने कहां गायब हो जाती थी। तो चलिए अरुणा ईरानी की इन बातों के साथ साथ कुछ गाने भी हो जाएं। हां, सुनते रहिए समर के साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेजेंड्स, सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो।

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: लो चलते चलते मैं तुमसे कहने आ गया हूँ, मेरी सांसों के चलने तक, मेरी बातों के थमने तक, तमन्ना के मचलने तक और रागों के ढलने तक रुका हूँ तुमसे ये कहने के लिए, मेरी जान, जान में जान तुम हो, जान की अमान तुम हो। वेलकम बैक समर, इसी आशिकाना अंदाज के साथ लेजेंड्स का नजराना लेकर लौट आया है। आप सुन रहे हैं सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो, रेडियो मसी 24/7 लाइव। अब आप कहेंगे आते ही जाने की बात कर रहे हो यार, लेकिन ये मेरे शो का आखिरी पहर है, आप जानते हैं। बातें, किस्से, गीत और खबर सबके साथ अब हुआ पूरा सफर, और आपके साथ ये सुहाना सफर कैसे बीत जाता है समय का पता नहीं लगता है। हाँ, हमारी आज की लेजेंड अरुणा ईरानी भी यही कहती है, मुझे आज भी ऐसा लगता है जैसे मैं वही छोटी सी बच्ची हूँ, वैसे ही उछल कूद करती और मस्ती करती हूँ सेट पर। मैं चाहे फिल्म के सेट पर हूँ या घर पर, मस्ती हमेशा ऑन रहती है। हाँ, क्या बात है। और उनके पति कुकू कोहली भी यही मानते हैं कि इंसान को अपनी जिंदगी का मजा और नशा दोनों होने चाहिए, और साथ में एक ख्वाब भी होना चाहिए जिसे जीना चाहिए, जिसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए, अदरवाइज आप एक भंवर में भटक कर खो जाते हैं। मेहनत और लगन आपको आपके ख्वाबों को पूरा करने में मदद करती है। यही तो बात होती है लेजेंड्स में, ये इंस्पायर करते हैं। चाहे गोविंदा हो, सलमान खान हो, शाहरुख हो या माधुरी, करिश्मा, सनी पाजी, सभी अरुणा जी के अभिनय की दाद देते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और अरुणा ईरानी इसी सम्मान को सबसे बड़ा पुरस्कार मानती है। हम भी अरुणा जी की लंबी उम्र की दुआ करते हैं। तो चलिए शो को अब यहीं समाप्त करने की आपसे आज्ञा लेते हैं। लेजेंड्स नामक इस शो का एक और खूबसूरत नजराना लेकर, एक और लेजेंड की दास्तान लेकर लौटेगा समर। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीपल अराउंड यू। अभी चलता हूँ, फिर मिलता हूँ, नमस्कार, बाय बाय।

0: शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Pe.
1: Raat akeli hai.
2: Raat akeli hai to kya? Hum to aap.

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो,
1: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
2: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
3: जीजी
2: Crushable nuts only on GGMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे wholesome healthy options.
3: GGMart, your personal grocer.
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

रानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राए, हमको इशारों से बुलाए।

जहाँ चार यार, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार। जहाँ चार यार, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार।

को कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा।

जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे

बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी।

संपत्ति जीती लुटी खुशी पर लौट के आए आए रे आए रे आए रे आए रे आए। पीना छूट गया पीना छूट गया बीवी ने इतना दिया प्यार पीना छूट गया। फिर दोनों ऐसे मिले फिर दोनों ऐसे मिले प्यार में ही डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार। जहां चारिया

0: फाइनल है, कभी आई लव यू नहीं बोलना है, राइट?
1: राइट.
0: कूल. वैसे नेवर से आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं?
1: नदी जमी जते.
0: नदी जमी जते. आह, इट्स सो सेक्सी.

नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: सुन टकाटक। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: अच्छा वो कौन सी चीज है जो किसी भी सब्जी में ना हो तो खाने में मजा नहीं आता? सोचिए सोचिए सोचिए ना। हाँ, मसाला या नमक। राइट, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आज ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ जुड़ चुकी है। और सुबह सुबह जब खाने पीने की बात हो जाती है ना तो मजा ही आ जाता है, सबका दिन अच्छा जाने वाला है। यार मैं आपसे पूछ रही थी कि अगर किसी सब्जी में नमक या मसाला कम होता है तो खाने में मजा कम आता है ना, ऐसा लगता है कि यार कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। ठीक ऐसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर कंट्रोवर्सी नहीं होती, ब्रेकअप नहीं होते, डिवोर्स नहीं होते, सेपरेशंस नहीं होते, डिचिंग नहीं होती, तो मतलब मजा नहीं आता यार। वो मसाला, वो नमक जो है ना, वो मिसिंग सा हो जाता है। डोंट यू थिंक सो? भाई मुझे तो ये बहुत ज्यादा लगता है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आज नुपुर बस उन्हीं कंट्रोवर्सीज, उन्हीं कहानियों को, उन्हीं मसाले को खींच कर लेकर आ चुके हैं आपको बताने के लिए। तो भाई आने वाले गाने और मेरी बातें, आहा, दोनों का कॉम्बिनेशन एक सैंडविच की तरह आपको मिलने वाला है। सुनो उनको एनीवेयर मेरी जान, मस्ती मॉर्निंग शो की हो चुकी है शुरुआत।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन
2: जोश में रहो।
0: इमेजिन आपने अपने एजुकेशन टाइम पे बहुत सारे फॉर्म्स फिलअप किए हों, एग्जाम्स क्रॉस किए हों, उसके बाद आपको कहीं एडमिशन मिला हो, फिर आपने एक डिग्री हासिल करी हो, तो कितने सारे फिल्टर लगने के बाद आपकी अहमियत बढ़ जाती है, राइट? और आपको खुद भी बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने कितना कुछ किया है, पर अब लगता है ये चीज़ें जो सॉर्ट करी जा रही है ना, कि आजकल के बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं करना है, ग्रेडिंग में मार्क्स दे देना है, उनको फील नहीं कराना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस चक्कर में ये फिल्टर्स कम से कम होते जा रहे हैं। हाँ, आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है और याद दिलाना चाहूंगी, बॉम्बे का एक बहुत ही आइकॉनिक एक्टिंग स्टूडियो, एक्टिंग थिएटर कह लीजिए, वर्कशॉप्स कह लीजिए, NSD, जहां से बहुत बड़े बड़े एक्टर्स निकले हैं, जहां पे एडमिशन लेना ही बहुत मुश्किल होता था, और एडमिशन मिलने के बाद जो आपसे प्रिपरेशन करवाई जाती है वो भी कोई नॉर्मल नहीं होती, और फिर आप वहां से पार करते हैं तो आप कहीं ना कहीं मूवीज में रोल में आ ही जाते हैं। मतलब ये अभी तक एक श्योरिटी मार्क था, पर रिसेंटली वहां पे कुछ अलग अलग तरह के छोटे छोटे कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, और बिना किसी फिल्ट्रेशन के भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी लेगेसी, उसकी ट्रस्टेबिलिटी, इन सब पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि अब क्या होगा। कमाने के लिए ये सारे फिल्टर्स हटाए जा रहे हैं, गलत बात है, समथिंग लाइक दैट। तो मार्केट में कुछ ऐसी ही हलचल चल रही है। मैं आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल।
3: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Sham ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
1: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
0: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
2: GG.
0: Crushival nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana. और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: इमेजिन एक ऐसी सेल जहां से इन रिटर्न आपने जो भी शॉपिंग करी और घर आके अपने घर के बड़ों को दिखाया कि मैं सेल से ये लेकर आई या आया, तो वो आपसे खुश होंगे ना कि नाराज। बिकॉज ये हेल्दी सेल जो है ना, ये आपकी पॉकेट के लिए बहुत ही हेल्दी है। सो हेलो, हाय, मैं आरजे अनुपम मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अभी शुरू हो चुकी है मिड ऑटम सेल, कृषि फल नट्स आपको दिए जा रहे हैं, राइट। जीजी मार्ट आपके लिए वंस अगेन बेहतरीन से बेहतरीन ऑप्शंस लेकर आए हैं। आप कहिए, द वर्ल्ड्स टेस्टीएस्ट सीरीज ऑफ फ्लेवर्ड एंड क्लासिक ड्राई फ्रूट्स आपको मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली मिल सकते हैं। जीजी मार्ट कियोस्क 12 वेलोसिटी नोवीना में आप टिल 25th ऑफ सितंबर ये शॉपिंग कर सकते हैं। आपको नेचुरल केमिकल फ्री हलाल सर्टिफाइड नट्स मिलेंगे, मतलब काजू बादाम से लेकर पीनट से लेकर हर तरह के ड्राई फ्रूट का कलेक्शन मिलेगा। एंड आप गिफ्टिंग के लिए भी अगर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं तो वो ऑप्शंस भी आपको यहां पर मिलेंगे। मैं आरजे नुपुर मजी मॉर्निंग शो पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें आपकी पर्सनल से लेकर बॉलीवुड तक की, डोंट गो एनीवेयर, लेकर आती हूँ इन अ शॉर्ट। बाय।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: अच्छा ऐसी मूवीज बड़ी अच्छी लगती हैं जिसमें एक एक्टर हीरोइन की याद में बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाता है. फॉर एन एग्जांपल रॉकस्टार मूवी हाँ एंड सैयारा मूवी में भी कहीं ना कहीं आपने एक म्यूजिकल और रोमांस अंदाज जो है ना इन दोनों को मिक्स होते हुए देखा है. और ये रीत तो बहुत पुरानी है. हाँ पहले से ही एक्टर्स एक माहौल बनाते हुए आ रहे हैं. हाँ सो मैं आज इन ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी ऐसा ही एक सूफियाना माहौल सिंगापुर में भी होने वाला है. कब 26th ऑफ सितंबर सैटरडे वाला दिन 7 PM टू 9 PM ऑडिटोरियम सिविल सर्विस क्लब एट टसनसन 6O टसनसन रोड सिंगापुर होने वाला है शो. परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रेजेंट्स इश्क सूफियाना बाय अमित धामेलिया. राइट एक ऐसा सूफी अंदाज जिसे बैठ कर आप बहुत खूबसूरती से एंजॉय कर सकते हैं. टिकट्स प्राइसिंग $60 and $80 में है. आप कॉल कर सकते हैं 8138279O पर. और इनके पुराने शोज भी हमेशा हाउसफुल रहे हैं तो वक्त हाथ से निकल जाए उससे पहले टिकट्स कर लो यार. मैं आज मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ. डोंट गो एनीवेयर मेरी जान.